0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची के सभी लिसनर्स को ईद अल अधा की दिल से मुबारकबाद। आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, आपकी जितनी भी मुरादें हैं, वो पूरी दिल से पूरी हों एंड आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां हैं और आप औरों की जिंदगी में खुशियां जो हैं वो बस बांटते ही रहें। अभी फिलहाल टिक्के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट। एंजॉय
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका गड्ढो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है वो, क्या मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है, मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आप ऊपर ले रहा हूँ।
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई, अचानक ऐसे हो गया। रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, इसको परेशान हूँ मैं।
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
5: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
6: बहुत कुछ होगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: वेल, आप सभी को ईद अल अधा की बहुत बहुत मुबारकबाद। इतना ही कहना चाहूंगी, आज का दिन सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि इमोशंस का सेलिब्रेशन है। वेल, इतना ही याद दिलाना चाहूंगी कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज होती है ग्रैटिट्यूड, शुक्र अदा करना उन सभी चीजों के लिए जो हमारे पास है। तो बस आज दिल खोल के दुआएं मांगी, अपनों को गले लगाइए, किसी की मुस्कुराहट की वजह जरूर बनिए। इसके साथ ही ये याद रखें, हैप्पीनेस बिकम्स इवन मोर ब्यूटीफुल व्हेन इट इज शेयर्ड। तो बस खुशियां बांटते रहें, खुशियां फैलाते रहें। अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स ऑल एंजॉय
2: मिर्ची मॉर्निंग्स, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स ऑल।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जम विच फट्टे चकांगे।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: फिर खाली हाथ चले आए. मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: Hi, salam Qatar. This is Disha Patni. On 89.6 Mirchi Online Qatar. And wish you all a very happy Eid. Eid Mubarak.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात. आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
4: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: वैसे इस वक्त ईद का जश्न कतर के कोने कोने में मनाया जा रहा है एंड सूरज चाचू भी इसे खुद को ना दूर ना रख पाए।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
1: वेल, अगर वेदर की अपडेट को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें तो भाई एज यूजुअल इन दिनों दिन जो है गर्मा गर्म अपना काम कर ही रहा है। टेम्परेचर अराउंड 41 टू 43 डिग्रीज थ्रू आउट द डे, इसलिए इस वक्त अगर आप फैमिली विजिट्स, ईद लंचेस या आउटडोर प्लान कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि जहां भी जाएं खुद को फुल्ली हाइड्रेट करके जाएं एंड साथ ही डायरेक्ट सन एक्सपोजर से खुद को जरा बचाने की कोशिश करें। लेकिन यार बात इतनी है ना कि ईद की वाइब जो है कुछ इतनी खास है, घरों की रौनक, वो बच्चों की एक्साइटमेंट एंड ढेर साना बेहतरीन हाय, वो लजीज खाना, कि इन सब बातों में गर्मी में ठंडी का एहसास जो है ना कहीं कलेजे की ठंडक के जरिए हमें हो ही जा रहा है। तो बस स्टे सेफ, स्टे कूल एंड दिल खोल कर सेलिब्रेट करते रहिए एंड अपनी जिंदगी में वो ठंडक को बनाए रखने के लिए सुनते रहिए कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन। हाय, हॉट जरूर है लेकिन कलेजे को ठंडक दे ही देता है मिर्ची। बंदी का नाम अंशु।
3: Weather check brought to you by RSL Group of Company. अब पाओ कतर में delivery riders और driver की job. For bright future, call now 3100813.
0: मिर्ची गानों की ईदी, only on मिर्ची, it's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनियन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनियन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
1: सो आई रिसेंटली मेट अ गर्ल थ्रू अरेंज मैरिज सेटअप, यू नो शी इज गुड बट शी अर्न्स वे मोर देन मी, आई फील देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या करूं।
2: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
4: मुबारक ईद मुबारक।
5: गानों की ईदी ऑन मिर्ची इट्स हॉट। हॉट बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: रही है गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

Richie. It's hot, hot. बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: एंजॉय सेवई शवरमा बिरयानी एंड कबाब मिर्ची पे आप सुन रहे हैं गानों की ईदी जनाब।
1: आगे लगे आगे लगे।

0: की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एट हॉट।
1: मुबारक ईद मुबारक। वल मिर्ची के सभी लिसनर्स को ईद अल अधा की बहुत सारी मुबारकबाद। वल इतना ही कहना चाहूंगी, आपकी जिंदगी में खुशियां आए और ढेर सारी खुशियां आए। देखो यार, इस ईद आपको एक काम करना है, जरूर करना है, सोशल मीडिया में जरा कम सोशल होना है एंड सही मायने में अपने घर वालों के साथ, दोस्त यारों के साथ कनेक्शन मेंटेन करना है। क्या ना, हम अक्सर बिजी हो जाते हैं सोशल मीडिया में ये दिखाने में कि हम कितने व्यस्त हैं, हमारा दिन कितना अच्छा जा रहा। भैया, उस दुनिया से जरा बाहर निकले और असल दुनिया जो आपकी जिंदगी में इतनी खूबसूरत रंग लेकर आई है, ईद की खुशियां लेकर आई है, उसे दिल से जिए। ऐसे जिए कि सोशल मीडिया में ना सही लेकिन अपने दिलों में उन यादों को आप हमेशा संजो कर रखें। क्या कहती पब्लिक। स्टेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। बंदी का नाम अंशु।
0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: मुबारक ईद मुबारक।
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एजॉन्ट
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
3: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
4: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
3: हेलो,
4: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है।
3: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे
4: हैं? मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ, आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
3: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
4: हैं, मोबाइल पे
3: और क्या?
4: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
3: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
4: आपने पहले तो नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
3: आपको बताना चाहिए था ना
4: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खम्भे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टर्बेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
3: आप खम्भे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टर्बेंस आ रही है, दिमाग खराब?
4: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
3: आपका दिमाग खराब,
4: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
3: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
4: नवेद लिखिए, नवेद
3: आ रही है।
5: पायल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टर्बेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा, मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है।

0: खुलसेल कटारा घुमाएंगे, यहाँ का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूत समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
1: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
2: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: Energy. It's hot. It's hot. बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।
1: हर घड़ी हर पल मुझे बस ख्याल।

0: गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एहसास। मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: मिर्ची की सभी लिस्टर्स को ईद अल अधा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी जिंदगी में खुशियां रहें और ढेर सारी खुशियां रहें। आप सबके लिए बस यही दुआ है यार। हम ना कभी कभी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, कभी डेडलाइंस, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि धीरे धीरे उन लोगों से कनेक्ट करना कम कर देते हैं जो कभी हमारी पूरी दुनिया हुआ करते थे। यार वो कजिन्स जिनके साथ बचपन में पूरे समर्स हमने गुजारे, वो रिलेटिव्स जिनके घर जाए बिना हमारा दिन कभी पूरा ना हुआ करता था, वो हंसी, वो शरारतें, वो फैमिली डिनर्स, यार पता ही नहीं चला कि कब ये सारी बातें मेमोरीज बन गई। बल इतना ही कहना चाहूंगी, इस ईद क्यों ना एक काम करें, आज किसी अपने को कॉल करें, कोई पुरानी बात एक बार फिर से याद करें और वो बचपन वाली स्टोरीज को फिर से दोहराई जाए। तो भाई हंसिए, मुस्कुराइए, अपनों के साथ खूब सारा वक्त बिताइए, यानी जितने खूबसूरत पल हमें जिंदगी में मिले हैं उन्हें खूब दिल से सेलिब्रेट करिए। स्टूडियो नंबर 8 हॉट बंदी का नाम अंशु।
0: It's hot.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Arz kiya hai.
2: Irshad.

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट और आप सुन रहे हैं मिर्ची।
4: विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी ईद।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
6: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
5: Gaano ki Eid on Mirchi. It's hot. Hot. बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारक।

के खाइए, है अगर सेवई और बिरयानी तो कीप डांसिंग एंड फॉरगेट कैलोरीज की कहानी।

0: सेवैयां खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉट।
1: अजी मुबारक मुबारक ईद अल अधा आप सभी को, पूरे दिल से मुबारक। आई एम प्रीटी श्योर आप सब जो है बहुत ही ज्यादा इन छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं एंड आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां। यार पता है क्या, लाइफ में ना कभी कभी दिल को हल्का करना बहुत जरूरी है। हम कई दफा पुरानी बातें, पुराने दर्द, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतने अंदर तक संभाल कर रखते हैं कि शायद किसी और को उसका एहसास ना हो, लेकिन हमारे दिल में वो एक बोझ जरूर बन जाता है। और शायद इसीलिए फेस्टिवल्स जो हैं इतने खूबसूरत होते हैं, क्योंकि ये हमें एक मौका देते हैं थोड़ा सा हील करने का, थोड़ा सा रिकनेक्ट करने का और थोड़ा सा अपने दिल को साफ करने का। तो ईद क्यों ना किसी को माफ कर दिया जाए, क्यों ना किसी से दिल से माफी मांग ली जाए, क्यों ना वो सारी नेगेटिविटी छोड़ दी जाए जो हम इतने टाइम से दिल में लेकर चल रहे हैं। और अगर दिल में सच में कुछ हो तो सिर्फ सच्चाई, सफाई और वो प्यार जो हमें और भी ज्यादा एक खूबसूरत इंसान बनाता है। तो बस इस ईद खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड अपनों के साथ दिल से जिंदगी को जीते रहिए। ईद मुबारक। बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।
2: मुबारक ईद मुबारक,
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सब

0: enjoying sevai, shawarma, biryani and kebab. Mirchi pe aap sun rahe hain gaano ki eedi janab.
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
2: सही है सही है।

0: गले लगा के देख।
1: जम के खाइए है अगर सेवई और बिरयानी, तो कीप डांसिंग एंड फॉरगेट कैलोरीज की कहानी।

0: सेवैया खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: दिस ईद द मैजिक कम्स अलाइव एट अबू सिद्राम मॉल। जॉइन लयाली ईद एट अबू सिद्राम मॉल ऑन 27, 28 एंड 29 मई फ्रॉम 6 पीएम टू 10 पीएम एंड एक्सपीरियंस द स्पेक्टेकुलर अलादीन शो, लाइव एंटरटेनमेंट, किड्स एक्टिविटीज एंड मच मोर। अबू सिद्राम मॉल, योर ईद डेस्टिनेशन।

0: सेवैया खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्ट।
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
0: Gaano ki Eid on Mirchi. It's hot. It's hot.
2: La la la la la.
0: बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: सेवैया खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्ट।
1: वेल, आप सभी को ईद की पूरे दिल से बहुत सारी मुबारकबाद। ईद अल अधा मुबारक। यार, वक्त जो है वो कितने जल्दी बदल जाता है ना। बचपन में फेस्टिवल्स का मतलब ही कुछ और था। एक एक्साइटमेंट होती थी कि ईद कब आएगी, घर के बड़े हमें ईदी कब देंगे, वो नेग कब मिलेगा, और फिर उस पैसे को संभाल संभाल कर रखना, प्लान बनाना कि क्या खरीदना है। यू नो, दोस लिटिल जॉयज फेल्ट सो बिग बैक देन। एंड अब देखें, धीरे धीरे रूल्स जो हैं वो रिवर्स हो चुके हैं। आज हम वो बन चुके हैं जो घर के बच्चों को ईदी देते हैं। उनकी स्माइल्स देखकर हम खुश होते हैं, उनकी एक्साइटमेंट में कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं। लेकिन यार, ऑनेस्टली एक बात कहूँ, जिंदगी में ना एक चीज बहुत जरूरी है, औरों को खुश रखते रखते अपने अंदर के उस बच्चे को हमेशा जिंदा रखना। तो आज भी कोई ना कोई छोटी सी चीज जो आपके दिल को खुशी देती है ना, वो जरूर करना। चाहे वो कोई फेवरेट फूड, कोई छोटी सी शॉपिंग, किसी दोस्त के साथ कोई अच्छी सी कॉन्वर्सेशन, या बस फैमिली के साथ बिताया हुआ अच्छा सफल, जो भी बात है, ऐसा हर एक काम जरूर करें जो आपकी जिंदगी में भी खुशियां जो है वो जरूर लाए। तो देखो भाई, खुशियां बांटना जरूर है, लेकिन उसकी शुरुआत खुद से करना। स्टेडियम टू मिर्ची, ईद मुबारक। बंदी का नाम अंशु।
0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक।
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट हॉट। बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: सेवैया खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉट
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नफीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
5: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें।
6: नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
3: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
6: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
3: मीसम नाम है।
6: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
3: 1200 रुपए।
6: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
3: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
6: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
3: जी
6: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
3: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
6: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
3: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
6: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
6: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछने ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
3: कॉल सेंटर
6: सर, इतना हो सकता

0: तो ये सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले। उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
0: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
1: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
3: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
4: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट,
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
5: 89.6
6: FM, मिर्ची वन। It's hot.
7: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
6: Gaano ki Eid on Mirchi. It's hot. Hot. Biryani ki khushbu, sevai ki swaad, Eid ki sabko Mubarakbad.

0: गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एहसास 89.6 It's hot.
1: मुबारक ईद मुबारक
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची It's hot.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन

0: एडी घोड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं मुझको बेबी लक्की कर बात हमारी पक्की कर इतना क्या सोचे मुझे हाँ बोल के काम तू नक्की कर
1: Keep enjoying sevai, shawarma, biryani and kebab. Mirchi pe aap sun rahe hain gaano ki eedi janab.

0: उठाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एफएम।
1: यार आप सभी को ईद अल अधा की बहुत बहुत मुबारकबाद, ईद मुबारक। यार कभी नोटिस किया है कि हम में से बहुत सारे लोग कई दफा परफेक्ट मोमेंट्स का वेट करते हैं कि कुछ अच्छा करना है तो शायद मंडे से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे, न्यू ईयर से शायद नई बिगनिंग होगी। मतलब हमेशा एक स्पेशल मोमेंट ढूंढते हैं जहां लाइफ सडनली बेटर हो जाए। लेकिन यार सही मायने में देखा जाए तो हर दिन हमें एक नई बिगनिंग का मौका देता है, क्योंकि हर सुबह एक फ्रेश स्टार्ट होती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको एक स्पेशल ओकेजन चाहिए, एक इमोशनल पुश चाहिए, तो एक बात बताएं कि ईद से बेटर मोमेंट और क्या ही हो सकता है। तो क्यों ना आज एक नई शुरुआत की जाए, चाहे हेल्थ को लेकर, चाहे किसी अच्छी हैबिट को लेकर, या किसी ड्रीम को फाइनली सीरियसली लेने की बात हो, या सिर्फ खुद को थोड़ा और प्यार देने की ही बात हो, तो बस एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। लेकिन ऑनेस्टली बिग ट्रांसफॉर्मेशंस ऑलवेज स्टार्ट विद स्मॉल स्टेप्स। एंड बस दिल से यही दुआ है कि आप जिस इंटेंशन से आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं वो आने वाले वक्त में आपकी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बन ही जाए। और अगर ऐसा हो ना तो मुझे बताना जरूर। ईद मुबारक। बंदी का नाम अंशु।
0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: मुबारक ईद मुबारक।
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Arz kiya hai.
2: Irshad.

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, सीधा, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: नमस्कार, दिस इज रवीना टंडन. आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात. आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
4: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
5: मुबारक ईद मुबारक.
4: गानों की ईदी ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: किसानों की ईदी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट हॉट।
1: तो सॉलिड भागम भाग शुरू हुई। वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। वेल, आप सभी को ईद अल अधा की बहुत सारी मुबारकबाद। ईद मुबारक। यार, हम ना लाइफ में कभी कभी बस भागते ही रह जाते हैं, इतना ज्यादा कि कभी कभी खुद के साथ वक्त बिताना ही भूल जाते हैं। क्या खुद से कभी पूछा है कि मैंने लास्ट टाइम खुद के साथ वक्त कब बिताया था? अरे फिजिकली नहीं, इमोशनली। वेल, इस ईद इतना ही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा वक्त खुद के नाम भी कीजिए, थोड़ी देर शांत रहने की कोशिश करिए। यू नो, वो चाय की प्याली को सिर्फ पीना नहीं है, महसूस करना है, अच्छे गाने सुनना है, दुआएं मांगनी है, खुद से बातें करनी है। क्योंकि कहते हैं ना, समटाइम्स द बेस्ट रिलेशनशिप वी कैन हैव इज द वन विथ आरसेल्व्स। तो बस आज के दिन को दिल से खुद के साथ भी एंजॉय करें एंड औरों के साथ मिलकर इसे और भी ज्यादा बेहतर बनाएं। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।
0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट हॉट।
3: Authentic, original and better than our rights.

0: Mirchi. It's hot, hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
4: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
5: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश, जोश, जोश।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
5: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
4: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
5: मैं, मुझे नहीं पता।
4: हम साथ
5: कौन
4: साथ
5: सी है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और
4: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
5: ये भाई बहन थे। वेलकम।
3: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
2: You better watch her shine।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Mirchi ghadi mein is waqt baj rahe hain 9. Sunte rahiye 89.6. Mirchi Wan, it's hot.
2: Time check. In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 89.6
2: मिर्ची
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: ईद की खुशियाँ मनाओ और मिर्ची की तरफ से कानों की ईदी ले जाओ।
1: एक कोने में था बैठा जब मुझे वो दिखी थी, वो सबसे अलग थी, वो सबसे हंसी, आंखें मेरी फिर उसकी आंखों से जा मिली, एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी, एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास, ते मैनू नी पता सी गिलास च की, बट हौली हौली लक नू घुमा के नचदे लगे सो सेक्सी।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनियन मिर्ची इट्स हॉट।
1: चलिए इस ईद आपकी जिंदगी में थोड़ी ज्यादा खुशियाँ ले ही आते हैं। वेल मिर्ची के सभी लिसनर्स को ईद मुबारक, ईद की बहुत बहुत बधाई। वेल अगर आज के एक्सचेंज रेट्स को देखने की कोशिश करें तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.22, पाकिस्तानी रुपीज 76।
0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: चलिए इस ईद आपकी जिंदगी में थोड़ी ज्यादा खुशियाँ ले ही आते हैं। वेलमर्शी की सभी लिसनर्स को ईद मुबारक, ईद की बहुत बहुत बधाई। वेल अगर आज के एक्सचेंज रेट्स को देखने की कोशिश करें

थी नेपाली रुपीज 41.93। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स हॉट, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

Energy. It's hot, hot. बिरयानी की खुशबू सेवई की

0: वालों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एहसास 89.6
1: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: कबाब है।
1: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट मिर्ची।
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: बना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
4: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
5: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
4: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
5: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
4: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
5: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
4: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
5: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
4: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
5: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
4: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
5: नहीं, मेरे को दिए आपने?
4: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
5: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
4: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
5: अरे उन्होंने क्या कहा था यार, उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है
4: साहब जी, कोई ऐसे तो गलत बात है साहब जी, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है?
5: ऐसे कैसे हो सकता है यार, उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
4: सर मैं दलाल से बात करूंगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
5: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछो भाई।
4: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, हमको कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
5: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
4: हाँ जी।
5: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं, मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
4: गलती होगी साहब जी,
5: गलती होगी साहब जी। कान पकड़,
4: पकड़ ले।
5: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो बोल दो बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: कतर में है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है, क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
8: तो इंतजार खत्म, RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ।
7: अभी कॉल करें 3100-0813।
9: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
10: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
11: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6
13: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट
12: 89.6
7: मिर्ची।
1: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: यार देखो, बात इतनी है कि ये बातें छोटी जरूर हैं, लेकिन अक्सर खुशियां जो हैं बड़ी दे जाती हैं। ईद अल अधा की आप सबको मुबारकबाद और बहुत सारी मुबारकबाद। यार फेस्टिवल्स ना हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज बस याद दिला ही जाती हैं कि खुशियां अक्सर बहुत महंगी चीजों में नहीं होती। कभी कभी वो गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू, कभी परिवार के साथ बिताया गया वो खूबसूरत सफर, वो बच्चों की आवाज, उनकी हंसी, और कभी किसी अपने को, किसी दोस्त यार को अरे और बताओ बस यही कह देने में। कहते हैं ना, अक्सर खुशियां जो हैं छोटी छोटी बातों में बड़ी हो जाती हैं। तो क्यों ना इस ईद उन खुशियों को और ज्यादा दिल से महसूस किया जाए और एक हर खूबसूरत पल को एक नई याद की तरह वो दिल की यादों की मोतियों में पिरोया जाए। क्या कहती पब्लिक? स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। ईद मुबारक।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची।

0: रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 89.6
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: एकदम सही सुना तुमने। किम्स हेल्थ पर मिल रहा है फ्री डेंटल कंसल्टेशन। कोई पेमेंट नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं। बस पहले अपने डेंटल इश्यूज पहचानो, ट्रीटमेंट डिसाइड बाद में करो।
2: लिमिटेड ऑफर वैलिड फॉर जनरल एंड स्पेशलाइज्ड बोथ। बुक करो अपना फ्री डेंटल चेकअप सिर्फ किम्स हेल्थ पर।
3: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
4: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
5: हाय, दिस सलमान खान और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।
3: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
4: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1.
6: Mirchi 1.
0: It's hot.
7: Mirchi Ganuki Edi. Only on Mirchi. It's hot.

0: रहे गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अरे हम बाहर जाकर इन एक्टिविटीज के पैसे क्यों दें जब हमारा देश ये पूरा मौका देता है कि हम इसे यहाँ पे दिल से जी सके। वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। वेल, आप सभी को ईद अल अधा की बहुत सारी मुबारकबाद। वेल, आज का दिन जो है बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही ज्यादा स्पेशल। कतर के कोने कोने में एक बार फिर से जहाँ पे एक तरफ बिरयानी की खुशबू है तो वही दूसरी तरफ ईद का जश्न। वेल, अगर लगे कि आज करना है तो क्या ही करना है, तो इतना ही कहना चाहूंगी फटाफट से कहीं पहुंचना है तो वो है कटारा कल्चरल विलेज, जहाँ शाम 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक ढेर सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज आपको जरूर देखने को मिलेंगी। एंड ठीक 8:30 बजे आप जो है एक बार फिर से आसमान में उन टिमटिमाते हुए तारों को जरूर देख पाएंगे। अरे फायरवर्क्स की बात कर रही हूं मैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। दोस्त यारों के साथ, परिवार वालों के साथ एक बार फिर से अच्छे पल को जीने की तैयारी शुरू कर दें। लेकिन देखिए, जहां भी जाएं खुद को फुल्ली हाइड्रेटेड करके जाएं एंड अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु। ईद मुबारक।
2: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रही गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर दी अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज दी अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
2: Bollywood, only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: अहोरा चे अब्रा लोस ओजोस ओपन योर आईज
2: ओए होली होली गिद्दे

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
1: आई रिसेंटली हैड अ चाइल्ड एंड आई थिंक आई एम डूइंग अ गुड जॉब रेजिंग हिम, पर मेरी सास वो मुझे ताने मारती ही रहती है, ये करो वो करो, मैं क्या करूं?
2: तो श्रीमती जी आप एक काम कीजिए, आप अपने बच्चे पे ध्यान दे रही है तो सासू माँ को कहें वो अपने बच्चे पे ध्यान दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: फरहान अख्तर की प्लेलिस्ट में टॉप गाना कौन सा होगा पता है? दगा बाज रे है दगा बाज रे।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
1: और बड़े ही प्यार से वो डेडिकेट कर रहे होंगे ये गाना टू नन अदर देन रणवीर सिंह। हेलो जी, हाय। हाँ जी, आपको जरा अपडेट दे देती हूँ। बेसिकली FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय ने रणवीर सिंह के खिलाफ एक नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव अनाउंस किया है। अब चलिए इसके रीजन पे जाते हैं। सो बेसिकली फरहान अख्तर डायरेक्टोरियल अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म डॉन 3 में लीड रोल मिला था रणवीर सिंह को। इनफैक्ट अभी कुछ हफ्तों में इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू होने वाली थी, विच मीन्स के प्री प्रोडक्शन का काम ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका था। बट बॉम्ब तब गिरा जब रणवीर सिंह ने इस मूवी से रातों रात एग्जिट ले लिया, जिसकी वजह से द फिल्म एंड द एंटायर टीम हु इज इन्वॉल्वड इन इट वो बीच मच धार में फंस गए हैं यार। एंड दैट इज द रीजन दगा बाज रे है दगा बाज रे। वैसे रणवीर सिंह की टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है कि लाइक ऑलवेज रणवीर अपने आप को ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रखते हुए साइलेंस को चूज कर रहे हैं। बट मुद्दा तो ये है कि आपके चुप्पी साध लेने से क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? चलो माना कि धुरंधर इतनी बड़ी सक्सेस हो गई कि आपका मन हो रहा है कि आप अपनी फीस बढ़ा दें, बट यार पैसों के चक्कर में अपने क्राफ्ट से ना इंसाफी तो नहीं करना चाहिए ना? बाकी तो समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो
1: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
0: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
1: एक सेकंड रुकिए। छोटू, नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
0: हेलो,
1: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
0: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
1: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
0: आप पागल हो गए? मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
1: है मोबाइल पे
0: और क्या?
1: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
0: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
1: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
0: आपको बताना चाहिए था ना
1: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार, खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
0: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टरबेंस आ रही है? दिमाग खराब?
1: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
0: आपका दिमाग खराब?
1: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है? पहले डिसाइड करिए।
0: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
1: नवेद लिखिए, नवेद
0: आ रही है।
2: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पॉटलॉक।
4: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन।
11: इट्स हॉट।
12: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक,
11: गानों की मिर्ची। इट्स हॉट, हॉट। बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: सेवैया खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एस ऑन
1: 89.6
0: बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: गले लगा के देख।
1: जम के खाइए है अगर सेवई और बिरयानी, तो कीप डांसिंग एंड फॉरगेट कैलोरीज की कहानी।

0: किसानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्ट।
1: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो
2: मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग।
1: अल्फा में आलिया का कैरेक्टर स्पाई का नहीं बल्कि एक असैसिन का होने वाला है, जो रेज होती है और बिल्ड की जाती है टू किल पीपल। सो YRF की फर्स्ट फीमेल लेड स्पाई थ्रिलर मूवी की बात कर रही हूं मैं, जो आदित्य चोपड़ा के स्पाई वर्स की अपकमिंग फिल्म है। एंड नाउ रिपोर्ट्स सजेस्ट कि इस मूवी में आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर होगा उसकी टोनैलिटी थोड़ी एंटी हीरो वाली होगी। माइंड यू, द मूवी ऑल्सो स्टार्स शर्वरी, बॉबी देओल एंड अनिल कपूर एज द लीड्स एंड इज डायरेक्टेड बाय शिव रवायल, जो 10th ऑफ जुलाई को रिलीज होगी। दिलजीत दोसांझ ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एक बार फिर से। सो ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन जिन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन के आइकॉनिक वेन्यू के एक नहीं दो कंसेक्यूटिव नाइट्स सोल्ड आउट किए हैं। और इसी बात पे दिल से आ रहा है, पंजाबी आ गए ओए, पूरी दुनिया पे छा गए ओए। चलिए गोलमाल 5 की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में एक रीसेंट इंटरव्यू में तुषार कपूर ने कहा कि इसकी 80-90% ऑफ शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। माइंड यू, इस बार पहले के कास्ट मेंबर्स दैट इज अजय देवगन, अरशद वारसी, शर्मन जोशी, श्रेयस तालपड़े और कुणाल खेमू के अलावा अक्षय कुमार भी नजर आने वाले हैं। एंड स्पेसिफिकली तुषार हैज मेंशन कि अक्षय के साथ उनकी जो एक्टिंग नजर आएगी इन द मूवी इज गोना बी द आइसिंग ऑन द केक फॉर हिज करियर इज वेल। खैर, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।
3: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक,
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट हॉट। बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: दिस इज तापसी पन्नू,
1: आप सभी को ईद मुबारक।
4: इट्स हॉट।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 मिर्ची 1। It's hot.
5: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जिंदगी ने आपके साथ इतने सारे गेम खेले, अब आप जरा जिंदगी के साथ फन वाला गेम खेल लो यार।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप एंड नाउ इट्स टाइम टू फाइंड द मिर्ची फिल्मची ऑफ द डे। सो जो लोग मेरे शो को सुनते हैं दे ऑलरेडी नो कि आप मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजते हैं और मैं आपको कॉल करके ये बॉलीवुड गेम की शुरुआत करती हूँ। देर आर अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जिनके जवाब देने पे आपको ये मिर्ची फिल्मची का टैग मिलता है। तो सबसे पहले आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है दीपक जी। कैसे हैं सर? मैं भी बिल्कुल बढ़िया। तो क्या आप मिर्ची फिल्मची बनने के लिए तैयार हैं आज?
4: कोशिश करते हैं।
1: क्या बात है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल है, अनन्या पांडे की डेब्यू फिल्म का नाम क्या है?
4: स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू।
1: क्या बात है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट टू में लोग रो यानी कि रोहन किसको बोलते हैं?
4: टाइगर श्रॉफ होगा।
1: टाइगर श्रॉफ की किस फिल्म में विसल बजा गाना है?
4: पहली वाली हीरोपंती।
1: हीरोपंती की फीमेल लीड का नाम क्या है?
4: कृति सैनन।
1: कृति सैनन का डबल रोल किस फिल्म में है?
4: डबल रोल ये काजोल के साथ आई थी।
1: हाँ सही जा रहे हैं।
4: तीन पत्ती था क्या था?
1: तीन पत्ती तो नहीं था लेकिन पत्ती से ही रिलेटेड था।
4: दो पत्ती।
1: हाँ चलिए, दो पत्ती में पुलिस इंस्पेक्टर कौन बनती है?
4: पुलिस इंस्पेक्टर काजोल।
1: हाँ, काजोल और शाहरुख खान किस फिल्म में बेस्ट फ्रेंड्स बने हैं?
4: कुछ कुछ होता है
1: में टीना का रोल किसने प्ले किया है?
4: रानी
1: मुखर्जी की फिल्म जिसमें कार रेस होती है।
4: तारा रमपम।
1: हाँ, तारा रमपम के मेल लीड का नाम क्या है?
4: सैफ
1: अली खान। लंगड़ा त्यागी किस फिल्म में बनते हैं?
4: ओमकारा
1: में नमक इश्क का सॉन्ग किस पे पिक्चराइज है? हाँ जी,
4: बिपाशा
1: बासु की फिल्म जिसमें ऐश्वर्या राय भी है। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इतना अच्छा जो गेम अभी तक खेला है आपने उसके लिए ये टैग तो बनता है यार।
2: मिर्ची फिल्मची।
1: तो ब्रो, आज के शो पे फर्स्ट मिर्ची फिल्मची तो दीपक जी हैं, लेकिन दीपक जी के आगे ये गेम कौन कंटिन्यू करेगा वो तो वक्त बताएगा। यू नो द ड्रिल, मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके बस आपको अपना नंबर भेजना है, बाकी आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।
5: मुबारक ईद मुबारक।
2: It's hot, hot. बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: सेवैया खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स में लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.

Mariachi. It's Hot Hot. बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एफएम।
1: खेलो मगर प्यार से।
2: श्रुति मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
1: मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ, आप कहाँ जा रहे हो? नाटी नाटी मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, एंड यस इट्स टाइम टू फाइंड अनदर मिर्ची फिल्म ची। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, मैं आपको कॉल करती हूँ एंड देन आई आस्क अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, अगर जवाब सही हुए तो आपको डेफिनेटली ये टैग मिल जाता है। तो सबसे पहले आज ये गेम हमारे साथ खेला है दीपक जी ने, बट वो एक पॉइंट पे अटक गए थे, बट आगे अब हमारे साथ गेम कम्प्लीट करने के लिए देयर इज दिस पर्सन। किससे बात हो रही है?
3: सौरभ से।
1: सौरभ जी कैसे हैं आप?
3: बस बढ़िया।
1: तो क्या आप ये गेम आगे कंटिन्यू करेंगे मेरे साथ?
3: कोशिश कर सकते हैं।
1: तो फिर सवाल यही है कि बिपाशा बासु की किस फिल्म में ऐश्वर्या राय भी हैं उनके साथ?
3: धूम टू
1: में एसीपी कौन बनता है?
3: एसीपी वुड बी अभिषेक बच्चन।
1: अभिषेक बच्चन ने धीरू भाई का रोल किस फिल्म में किया है?
3: गुरु।
1: ग्रेट। गुरु की फीमेल लीड का नाम क्या है?
3: ऐश्वर्या राय।
1: ऐश्वर्या इश किस फिल्म में करती है?
3: देवदास
1: फिल्म में चंद्रमुखी का रोल किसने किया है?
3: माधुरी दीक्षित।
1: माधुरी दीक्षित का घाघरा वाला सॉन्ग किस मूवी में है?
3: ये जवानी है दीवानी
1: में नैना का रोल किसने किया है?
3: दीपिका पादुकोण।
1: दीपिका की मूवी जिसमें उन्हें लहू मुँह लग गया,
3: दैट वाज गोलियों की रासलीला।
1: रामलीला में मेल लीड रोल किसने किया है?
3: रणवीर सिंह
1: की एक मूवी जिसमें वो सारी लड़कियों को कॉन करते हैं,
3: लेडीज वर्सेस रिकी बेल
1: में रणवीर सिंह को कौन करता है?
3: अनुष्का शर्मा
1: को कैंसर किस फिल्म में होता है?
3: ए दिल है मुश्किल
1: में शायरा कौन होती हैं?
3: ऐश्वर्या राय।
1: क्या बात है, तो इसी बात पे आपको भी ये टैग दे ही देते हैं यार।
0: मिर्ची फिल्म ची।
1: भाई लोगों के अंदर के फिल्मची को ढूंढना अल्टीमेट लेवल का मजा दे रहा है मुझे, तो आपको कैसा लग रहा है वो मुझे जरूर बताना मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक।
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: इधर है।
1: जम के खाइए है अगर सेवई और बिरयानी तो कीप डांसिंग एंड फॉरगेट कैलोरीज की कहानी।

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एहसास।
1: मतलब एक्ट्रेसेस की कोई आइडेंटिटी नहीं होती क्या?
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: नहीं नहीं नहीं बाबू मोशाय, इससे पहले कि आप मुझे जज करें, लेट मी टेल यू, ये बात पर्सनल लेवल पे नहीं प्रोफेशनल लेवल पे कर रही हूँ मैं। आई मीन जब हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस किसी फिल्म में कास्ट की जाती हैं, तो उनके कैरेक्टर को अच्छे से बिल्ड क्यों नहीं किया जाता? अल्टीमेटली मेल कैरेक्टर के आर्क को कंप्लीट करने के लिए वो जो फीमेल कैरेक्टर है उसको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, आपको नहीं लगता? अरे भूल गए, फिल्म ब्रह्मास्त्र में कैसे शिवा शिवा करती फिर रही थी आलिया भट्ट, वो भी एक स्ट्रेंजर के लिए जिससे बस कुछ मिनटों के लिए मिली थी वो, एंड देन शी फेल इन लव विद हिम, एंड उसके बाद उसके सुपरनैचुरल इश्यूज को डील करते हुए अपनी पूरी जिंदगी उस पे न्योछावर कर दी। तो बस इसी के मद्देनजर आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी ही फीमेल कैरेक्टर्स की बात हो रही है। लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे तू झूठी मैं मकार से श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में, जो हमेशा से एंटी जॉइंट फैमिली पर्सन होती है बट बाय द एंड ऑफ द मूवी प्रो जॉइंट फैमिली बन जाती है, और ये चीज सिर्फ 15 मिनट में कंप्लीट कर दिया है लव रंजन साहब ने। कसम से जब ये मूवी देखनी शुरू की थी ना मैंने, देन आई वाज हैप्पी कि चलो कोई तो एक फीमेल कैरेक्टर इनकी मूवी में एंबिशंस के साथ आई, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी थी, आइडेंटिटी थी, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी ये सारी चीजें मटिया मेट हो गई। कसम से अगर इस मूवी को इस पॉइंट पे खत्म करते कि रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर दोनों अलग अलग रह रहे हैं, देन आई वुड हैव बीन मोर देन हैप्पी। खैर मेरी इस लिस्ट में और भी कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स की बात बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। तब तक के लिए यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।
4: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक,
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट हॉट। बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको

0: हजारों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एजॉज
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ला रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
2: मैं कहाँ रहा हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने आ रहा है, परेशान हूँ मैं। हर साल का रिटर्न वेटर सब फाइल कर देता हूँ। वो अभी
2: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद

0: रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा।
1: यार
0: थैंक यू।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
2: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
5: मुबारक ईद मुबारक,
2: गानों की ईदी ऑन मिर्ची इट्स हॉट। हॉट बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको।

0: keep enjoying sevai, shawarma, biryani and kebab. Vichy pe aap sun rahe hain gaano ki eedi janab.
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
2: सही है सही है।

0: गले लगा के देख।
1: जम के खाइए है अगर सेवई और बिरयानी तो कीप डांसिंग एंड फॉरगेट कैलोरीज की कहानी।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एक अम्बिशियस फीमेल कैरेक्टर को लव इंटरेस्ट में तब्दील करना जरूरी है क्या?
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
1: बाबू मोशाय। बात हो रही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, जहाँ लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है कि वो एक मूवी तो बनाए लेकिन उसमें हर बार वर्चस्व रहे तो सिर्फ और सिर्फ मेल लीड का। फीमेल लीड को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मतलब उसका पर्सोना तैयार किया जाता है अम्बिशन के साथ, आइडेंटिटी के साथ, कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मूवी प्लॉट एकदम से घूम जाता है और वो हीरो की लव इंटरेस्ट बन के रह जाती है। बस कुछ ऐसी ही कैरेक्टर्स की लिस्ट निकाली है आज, जिसको डिस्कस कर रही हूँ इन माय पांच का पंच की लिस्ट, जहां सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट फिल्म तू झूठी में मक्कार से श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में। अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म नमस्ते लंदन से कटरीना कैफ के कैरेक्टर के बारे में। हां जी, जैज का कैरेक्टर जिसकी शादी उसके मर्जी के खिलाफ की जाती है, उसके बाद उसको विलेन बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे लंदन में जीना चाहती है। बट फिर अल्टीमेटली टुवर्ड्स द एंड क्या होता है, कटरीना को अक्षय कुमार से प्यार हो जाता है एंड इवेंचुअली वो सारी चीजों को गिव अप करके पंजाब के एक गांव में जाके सेटल हो जाती है। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर तीन पे बात करते हैं दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर की, फ्रॉम द फिल्म ये जवानी है दीवानी। हंजी, नैना तो याद होंगी आपको। जिस हिसाब से बनी बोले तो रणबीर कपूर के कैरेक्टर को एक प्रॉपर आर्क दिया गया था, उसके उड़ने दौड़ने गिरने सारी चीजों को अच्छे से विजुअलाइज किया गया था, वो क्या दीपिका पादुकोण के साथ नहीं हो सकता था? उसके एस्पिरेशंस नहीं थे, उसका फ्यूचर नहीं था, वो कोई अच्छा काम नहीं कर रही थी। बट क्या ही कर सकते हैं, हिंदी फिल्म है भाई, यहां तो हीरो को ही वर्चस्व दिया जाएगा और हीरोइन को हीरो के कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करने वाली गुड़िया बनाया जाएगा। खैर, अगर मेरी इस लिस्ट में आप भी कोई मूवी ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से। मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे।
5: यू बेटर वॉच हर शाइन।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026. एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
2: मुबारक ईद मुबारक.
3: It's hot.

أشهد أن لا

0: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
1: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
2: Hi, Mirchi listeners. This is Jacqueline Fernandez. Wishing all of you guys a very, very Eid Mubarak. It's hot.
0: अरे वाह, ये हुई ना बात। आपको भी ईद मुबारक।
1: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
4: Mubarak Eid Mubarak.
3: बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: सेवैया खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्ट।
1: बिना हीरोइन के हीरो का कैरेक्टर आर्क कंप्लीट नहीं हो सकता क्या?
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
1: कजन से यार बाबू मोशाय, कभी कभी तो ऐसे ही ख्याल आते हैं क्योंकि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को इस चीज से प्यार है। मतलब अगर वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसमें एक स्ट्रॉन्ग हेडेड फीमेल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया तो उसको सस्टेन कर ही नहीं पाते ये, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द मूवी उसके एम्बिशन उसकी सारी इच्छाओं को साइडलाइन कर दिया जाता है और हीरो के कैरेक्टर आर्क को कंप्लीट करने के लिए उसको हीरो का बस एक लव इंटरेस्ट बना के छोड़ दिया जाता है। आज कुछ ऐसी ही फीमेल कैरेक्टर्स की हो रही है बात थ्रू माय पांच का पंच लिस्ट, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट तू झूठी में मकार से श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर के बारे में। नंबर दो पे हमने बात की नमस्ते लंदन से कैटरीना कैफ के कैरेक्टर के बारे में। नंबर तीन पे हमने बात की ये जवानी है दीवानी से दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के बारे में। अब नंबर चार पे बात करते हैं अनुष्का शर्मा के कैरेक्टर के बारे में फ्रॉम द फिल्म जब तक है जॉन, क्योंकि भैया जब तक मैडम शाहरुख खान से प्यार में नहीं पड़ती हैं, बोले तो समर से प्यार में नहीं पड़ती हैं, तब तक अकीरा की जिंदगी बड़ी ही इंडिपेंडेंट सी क्वर्की सी फ्री स्पिरिटेड सी चल रही होती है। वो एक मस्त डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर होती है जिसको समर से जैसे ही प्यार होता है वो अपनी सारी चीजें भूल के समर के पर्सनल ग्रोथ के बारे में, उसके लॉन्ग लॉस्ट लव बोले तो कैटरीना कैफ से मिलाप कराने के बारे में सोचने लगती है एंड दिस इज हाउ शी हैप्पीली एग्जिट्स द मूवी एज वेल। खैर लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आलिया भट्ट के कैरेक्टर के बारे में, जो इनिशियली काफी कम्पीटिंग होती है। हाँ जी, वो जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर की ट्रॉफी होती है उसके लिए काफी जद्दोजहद करती है बंदी, बट जैसे ही उसको प्यार होता है वो कॉम्पिटिशन को अबैंडन कर देती है। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाती है कि भैया इन दोनों गाइज में से मेरे लिए कौन सा सही है। मतलब वाजंट इट आउटराइट स्टूपिड? खैर अगर मेरी इस लिस्ट में आप भी कोई फिल्म ऐड करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट MIRCHISHRUTI दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से। मैं आपको फेसबुक या फिर इंस्टा पे मिलूंगी। मीनवाइल एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मुबारक ईद मुबारक,
0: it's hot, hot. बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद

एंजॉयिंग सेवई शवरमा बिरयानी एंड कबाब मिर्ची पे आप सुन रहे हैं गानों की ईदी जनाब। We are the sounds of the streets.

0: सेवैया खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो
0: मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग।
1: अल्फा में आलिया का कैरेक्टर स्पाई का नहीं, बड़े एक असैसिन का होने वाला है, जो रेज होती है और बिल्ड की जाती है टू किल पीपल। सो YRF की फर्स्ट फीमेल लेड स्पाई थ्रिलर मूवी की बात कर रही हूँ मैं, जो आदित्य चोपड़ा के स्पाई वर्स की अपकमिंग फिल्म है। एंड नाउ रिपोर्ट्स सजेस्ट कि इस मूवी में आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर होगा उसकी टोनैलिटी थोड़ी एंटी हीरो वाली होगी। माइंड यू, द मूवी ऑल्सो स्टार्स शर्वरी, बॉबी देओल एंड अनिल कपूर एज द लीड्स एंड इज डायरेक्टेड बाय शिव रवायल, जो 10th ऑफ जुलाई को रिलीज होगी। दिलजीत दोसांझ ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एक बार फिर से। सो ही हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन जिन्होंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन के आइकॉनिक वेन्यू के एक नहीं दो कंसेक्यूटिव नाइट्स सोल्ड आउट किए हैं। और इसी बात पे दिल से आ रहा है, पंजाबी आ गए ओए, पूरी दुनिया पे छा गए ओए। चलिए गोलमाल 5 की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में एक रीसेंट इंटरव्यू में तुषार कपूर ने कहा कि इसकी 80-90% ऑफ शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। माइंड यू, इस बार पहले के कास्ट मेंबर्स दैट इज अजय देवगन, अर्शद वारसी, शर्मन जोशी, श्रेयस तालपड़े और कुणाल खेमू के अलावा अक्षय कुमार भी नजर आने वाले हैं। एंड स्पेसिफिकली तुषार हैज मेंशन्ड कि अक्षय के साथ उनकी जो एक्टिंग नजर आएगी इन द मूवी इज गोना बी द आइसिंग ऑन द केक फॉर हिज करियर इज वेल। खैर, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
2: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
3: अरे गोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
4: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।

0: उठाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एहसास।
1: वैसे इस वक्त ईद का जश्न कतर के कोने कोने में मनाया जा रहा है एंड सूरज चाचू भी इसे खुद को ना दूर ना रख पाए।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
1: वेल, अगर वेदर की अपडेट को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें तो भाई एज यूजुअल इन दिनों दिन जो है गर्मा गर्म अपना काम कर ही रहा है। टेम्परेचर्स अराउंड 41 टू 43 डिग्री थ्रू आउट द डे, इसलिए इस वक्त अगर आप फैमिली विजिट्स, ईद लंचेस या आउटडोर प्लान कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि जहां भी जाएं खुद को फुल्ली हाइड्रेट करके जाएं एंड साथ ही डायरेक्ट सन एक्सपोजर से खुद को जरा बचाने की कोशिश करें। लेकिन यार बात इतनी है ना कि ईद की वाइब जो है कुछ इतनी खास है, घरों की रौनक, वो बच्चों की एक्साइटमेंट एंड ढेर साना बेहतरीन हाए वो लजीज खाना, किन सब बातों में गर्मी में ठंडी का एहसास जो है ना कहीं कलेजे की ठंडक के जरिए हमें हो ही जा रहा है। तो बस स्टे सेफ, स्टे कूल एंड दिल खोल कर सेलिब्रेट करते रहिए एंड अपनी जिंदगी में वो ठंडक को बनाए रखने के लिए सुनते रहिए कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन। हाय, हॉट जरूर है लेकिन कलेजे को ठंडक दे ही देता है मिर्ची। बंदी का नाम अंशु।
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813।
4: पत्र लेखा और उनके हस्बैंड राजकुमार राव की फर्स्ट थिएट्रिकल प्रोडक्शन
5: श्रुति श्रुति
6: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
4: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अपकमिंग फिल्म जिसका नाम अब बदल दिया गया है। सो इस मूवी में पत्र लेखा खुद नजर आने वाली हैं अलोंग विद मानवी गागरू, जिसका नाम पहले रखा गया था हीर सारा एंड पॉन्डिचेरी, बट अब उसको बदल के सिर्फ हीर सारा रखा गया है। इनफैक्ट ये मूवी पहले 29th ऑफ मे को रिलीज होने वाली थी बट नाउ इट हैज बीन पोस्टपोन टू 12th ऑफ जून। माइंड यू इसको डायरेक्ट कर रहे हैं कार्तिक चौधरी एंड ये एक रोड ट्रिप की कहानी होने वाली है विच इज गोइंग टू ट्रेस एन इमोशनल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी ऑफ टू वुमेन और इस दौरान उनके पर्सनल स्ट्रगल, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड इमोशनल हीलिंग पे भी फोकस रखा गया है। यार आई एम अ गर्ल्स गर्ल और हमारी इंडस्ट्री की तरफ से अगर गर्ल पावर वाली कोई फिल्म आती है या फिर सिर्फ फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स वाली मूवी आती है तो मुझे स्पेसिफिकली अंदर से बहुत ज्यादा खुशी होती है एंड आई एम डेफिनेटली गोना वॉच दिस मूवी इन द थिएटर्स। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
5: मुबारक ईद मुबारक
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सेवैया खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एस ऑन
1: मिर्ची।
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
4: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
4: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
4: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
4: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
4: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
4: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
4: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
4: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है,
3: साहब जी को
4: ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
4: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
3: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
4: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
4: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
4: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
3: पकड़ लेती,
4: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो बोल दो बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके।

0: अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
3: दोनों मिलेगा.
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन
5: 89.6
6: FM, मिर्ची वन.
7: It's hot.
0: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
8: This Eid, the magic comes alive at Abu Sidram Mall. Join Layali Eid at Abu Sidram Mall on 27th, 28th and 29th May from 6 p.m. to 10 p.m. and experience the spectacular Aladdin show, live entertainment, kids activities and much more. Abu Sidram Mall, your Eid destination.
9: Mubarak Eid, Mubarak.
10: It's hot, hot.
11: बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद.

0: किसानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एहसास।
1: हेलमेट पहनना एक आर्ट होता है, आर्ट।
2: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
1: मिर्ची पे ट्यून इन हूँ आप, मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और हेलमेट पहनने वाले दो कैटेगरी ऑफ लोगों की बात कर रही हूँ, जिसमें पहले वाले वो जो सेंसिबल हैं, इनको पता है कि भाई हेलमेट सेफ्टी के लिए पहना जाता है, ना कि सिर्फ चलान से बचने के लिए। लेकिन द सेकंड कैटेगरी ऑफ पीपल, ओहो, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के कीड़े ने काट रखा है इनको बड़े गलत जगह पे, क्योंकि इनके हिसाब से हेलमेट सर पे नहीं पहनते, वो तो हाथ में कंगन के जैसे लटकाते हैं ना। सामने अगर ट्रैफिक पुलिस दिखी, चलान का खौफ आया, तब ये अपनी कलाई से अपने उस हेलमेट रूपी कंगन को निकालते हैं और अपने सर पे ताज के जैसे विराजमान करते हैं। तो बताइए आप इन दोनों में से किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? MIRCHISHRUTI, मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट करके ये बातें कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
3: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक,
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट हॉट। बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

के खाइए है अगर सेवई और बिरयानी तो कीप डांसिंग एंड फॉरगेट कैलोरीज की कहानी. Authentic, original, and better than our right.

0: वालों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एहसास
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे
2: यू बेटर वॉच हर

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: फिर खाली हाथ चले आए. मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: हाय दोस्तों, मैं हूँ मिका सिंह और मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात. आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.

Mochi. It's hot. Hot. बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद

चलिए इस ईद आपकी जिंदगी में थोड़ी ज्यादा खुशियाँ ले ही आते हैं। वेलमर्ची की सभी लिसनर्स को ईद मुबारक, ईद की बहुत बहुत बधाई। वेल अगर आज के एक्सचेंज रेट्स को देखने की कोशिश करें तो 1 रियल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.22, पाकिस्तानी रुपीज 76.89, बांग्लादेशी टका 33.68, श्रीलंकन रुपीज 89.77 एंड इसके साथ ही नेपाली रुपीज 41.93। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां। लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। इट्स Enjoy, बंदी का नाम अंशु।

0: फैनों की ईदी only on मिर्ची एजॉन्ट.
1: I'm genuinely keeping my fingers crossed for this one.
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और अगर आपकी यादें किसी चीज को लेकर एक स्पेसिफिक तरीके से बनी हुई है, इनफैक्ट वो बहुत ही खूबसूरत सी यादें हैं, और उस चीज को लेकर कुछ नया किया जाए तो आपको दिमाग में रहता है ना कि यार बस मेरी उन यादों के साथ छेड़छाड़ मत करना, मतलब जो नॉस्टैल्जिया है उसको मेरे लिए खराब मत करना. चलो कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आइकॉनिक टीवी सीरीज ऑफिस. ऑफिस याद तो होगा आपको, पंकज कपूर स्टार है जिसमें वो मुसद्दी लाल बनते हैं और वो ड्रामा. ओ हो हो हो हो. सो बेसिकली इस सीरीज का सीजन 2 आ रहा है. यस यू हर्ड इट राइट. जिसमें लीड रोल निभाने वाली हैं रिनाउंड टीवी स्टार श्रुति शर्मा. अब चलिए इनके पहले के काम भी आपको याद दिला दूं. गठबंधन, नजर 2, नमक इश्क का, मिट्टी, इनफैक्ट हीरा मंडी में भी नजर आई है मोहतरमा. तो ये ऑफिस ऑफिस का सीजन 2 आने की वजह से हम टीवी बफ्स के लिए, इनफैक्ट 90s किड्स के लिए एक वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया तो है, बट साथ में एक डर भी है कि हमारे उस नॉस्टैल्जिया को खराब ना किया जाए विद दिस न्यू वर्जन. एंड दैट इज द रीजन आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड. बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल.
4: मुबारक ईद मुबारक.
0: It's hot. Biryani ki khushbu, sevai ki swaad.

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एजॉन्ट।
1: ईद आई और बचपन की ईद को याद ना किया, ऐसा कैसे हो सकता है यार।
2: सारा जमाना ऐ सारा का दीवाना।
0: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi, और आप सभी को तहे दिल से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। अब पता है क्या, ये ना इस ईद की बात नहीं है, ये हर ईद के साथ होता है कि मैं जब भी ईद आती है ना तो बचपन की ईद को जरूर याद करती हूँ, क्योंकि बचपन की ईद बड़े होने वाली ईद से ज्यादा स्पेशल हुआ करती थी। पता है क्यों? क्योंकि बचपन की ईद ना बड़ी बेफिक्र हुआ करती थी, उड़े दिल बेफिक्रे वाली। और नहीं तो यार, अब जब बड़े हो गए हैं तो यार हम खुद सफाइयां कर रहे होते हैं, हम खुद धुलाइयां कर रहे होते हैं, खुद के कपड़े खुद ही सिलवाने होते हैं, खाने भी बनाने होते हैं, गेस्ट को भी देखना होता है और खुद का खाना भी देखना होता है। कितना सारा काम आ गया बोलो। बचपन में पता है क्या होता था, ठाट से बैठे रहते थे हम लोग ड्रॉइंग रूम में और मम्मी जो है वो खाने भिजवाती रहा करती थी। कभी शीर खुरमा आ रहा है तो कभी सैंडविचेस आ रहे हैं तो कभी बिरयानी आ रही है। ओए होए, अब तो खुद ही लाना पड़ता है यार। इनफैक्ट जो लाने वाले इंसान होते थे और भेजने वाले इंसान होते थे, हम एक्चुअली उस जगह शिफ्ट हो गए, सीधे ड्रॉइंग रूम से किचन में। आई थिंक ईद के मामले में भी दैट इज अडल्टिंग। बट एनीवेज, जो भी हो, ईद का मजा तो खाने पीने ओढ़ने पहनने और गप्पे लगाने में ही है, क्या बोलते हो? तो चलो फिर आज हो जाए ईद की सेलिब्रेशन मिड डे मोहब्बत पर। 90s के गियर में गाड़ी को डालती हुई आपसे कहती हूँ, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: मुबारक ईद मुबारक,
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

के खाइए, है अगर सेवई और बिरयानी तो कीप डांसिंग एंड फॉरगेट कैलोरीज की कहानी।

0: सेवैयां खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एफएम।
1: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
6: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक,
5: गानों की ईदी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एजॉन्ट।
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हालांकि ये फिल्म रिलीज तो लेट 80s में हो गई थी, लेकिन ये फिल्म का चार्म ऐसा था कि हम इस फिल्म को देखते देखते बड़े हुए। एंड द फिल्म इज चालबाज।
2: मिर्ची VCR।
3: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ये फिल्म हमने न जाने कितनी बार देखी है। DD1 पे आई है तब देखी है, फिर केबल आ गया और ZTV पे जब ये आया करती थी तो भी हम कभी मिस नहीं करते थे चालबाज को देखना। भले कितनी बार देखी हो, हमेशा हमें लगता था यार ये फिल्म तो देखना बनता ही बनता है। इतना ड्रामा, इतना अमेजिंग कॉमिक टाइमिंग एंड ऑफकोर्स श्रीदेवी का चार्म, उनकी एक्टिंग, उनकी कॉमेडी, एवरीथिंग वाज जस्ट कमाल एंड धमाल इन दिस फिल्म। बट डिड यू नो कि इस फिल्म की कास्टिंग के लिए सनी देओल से पहले अनिल कपूर को चूज किया गया था, लेकिन फिर उन्होंने इस रोल को डिक्लाइन कर दिया बिकॉज ऑफ द रीजन कि उन्हें लगा कि अगर श्रीदेवी उनके ऑपोजिट होंगी ना तो उनका कैरेक्टर ओवरशैड हो जाएगा। एंड ही वॉज नॉट रॉन्ग एट ऑल, हाँ, क्योंकि पूरी की पूरी स्क्रीन तो श्रीदेवी ने ही खाली थी इस फिल्म के अंदर। इवेंचुअली देन रजनीकांत एंड सनी देओल वर कास्ट इन द फिल्म। एंड द रीजन दैट सनी देओल टुक दिस रोल वॉज कि he got inspired and motivated by the fact कि धर्म पाजी ने भी अपनी जवानी के टाइम में सीता और गीता करी थी डबल रोल वाली फिल्म। तो सनी देओल ने कहा कि जब पापा ने करी है तो why not me। एंड ऑफ कोर्स सीता और गीता सिर्फ और सिर्फ सनी देओल के लिए इंस्पिरेशन नहीं थी, चालबाज की स्टोरी के लिए भी काफी बड़ी इंस्पिरेशन थी। सीता और गीता जिसने देखी है और चालबाज फिर देखी है, दोनों लोगों को समझ में आ गया होगा। बट कमाल की बात है ना यार, मम्मा की फेवरेट वॉज सीता और गीता और हम बच्चों की फेवरेट वॉज चालबाज एंड स्टिल इज। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: मुबारक ईद मुबारक। It's hot.

0: की ईबी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्स
1: घर दे कम ना रुकणगे ओ जिम विच फट्टे चकांगे
2: यू बेटर वॉच हर शाइन।

0: रे। 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay, best rate, no stress. iPay wallet का भरोसा, download कीजिए आज ही. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. अर्ज किया है
2: इरशाद

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: Hi, this is आमिर खान।
4: सभी दर्शकों को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा।
5: It's hot.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
6: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
7: मुबारक ईद मुबारक
6: गानों की ईदी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: on Mirchi. It's on.
1: Sara zamana, sara ka deewana.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
3: ये बात तो मिलेनियल्स और उनके पेरेंट्स को भी पता है कि चालबाज जब बनी थी तो वो सीता और गीता का रीइंटरप्रिटेशन ही थी, लेकिन काफी लोगों को ये नहीं पता है कि कमाल हसन का भी इस फिल्म के अंदर कंट्रीब्यूशन है।
2: मिर्ची चैट रूम।
3: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड कमल हसन का डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन यू है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे पंकज पारेशर, वो अक्सर कमल हसन जो कि उनके काफी अच्छे दोस्त थे उनसे कंसल्ट किया करते थे स्क्रीन प्ले को लेकर, ताकि इस फिल्म का एसेंस जो है वो बना रहे और वो बिल्कुल वैसी ना हो जाए जैसे कि सीता और गीता थी, यानी कि इसके अंदर कुछ नया फ्लेवर आए। एंड थैंक्स टू श्रीदेवी दैट रियली हैपेंड। लेकिन आपको पता है जब ये सॉन्ग शूट हो रहा था दैट टाइम श्रीदेवी को 103 फीवर था भाई, उसमें भी उन्होंने ये आइकॉनिक रेन डांस सीक्वेंस किया। बुखार है तो इंसान नॉर्मल काम फिर भी करने का सोच लेगा, लेकिन रेन डांस सीक्वेंस, हैट्स ऑफ टू हर बॉस। लेकिन फिर हुआ भी क्या, ऊपर वाला भी ना किसी के टैलेंट को उसकी मेहनत को देखकर नवाज ही देता है। इस गाने के लिए सरोज खान को बेस्ट कोरियोग्राफी का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, एंड इन फैक्ट श्रीदेवी आल्सो अर्नड हर बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड फॉर दिस फिल्म। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मुबारक ईद मुबारक।
0: It's hot, hot.

0: खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्ट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है। What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे। मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था।
3: What a way to confess, अभय देओल। अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: एक सर्टेन टाइम तक हमारे पास केबल टीवी पर चैनल्स बहुत कम थे, जिनमें स्टार प्लस भी एक था। वो होते हुए भी नहीं था क्योंकि वो इंग्लिश में चला करता था यार।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। याद है कैसे हम रिमोट लेकर उस चैनल को तुरंत बदल देते थे जो स्टार प्लस हुआ करता था, क्योंकि इंग्लिश शोज तब हमारे बस की बात ही नहीं थी ना यार। इतने मैच्योर शोज हुआ करते थे, समझ ही नहीं आते थे, सर के ऊपर से जाते थे, बाउंसर हुआ करते थे, और वो सब कुछ हमें अपनी उम्र के हिसाब से बड़ा बोरिंग लगा करता था। लेकिन फिर एक दिन एक नए सफर की शुरुआत हुई और स्टार प्लस ने अपना पहला हिंदी शो लॉन्च किया। बस वही टाइम था जब हम सबका दिल जीत लिया था स्टार प्लस ने। धीरे धीरे वो चैनल जो कभी हम इग्नोर किया करते थे, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। कहानी घर घर की से लेकर क्योंकि सास भी कभी बहू तक, एक नए एरा की शुरुआत हो गई। आज भी जब कभी ऐसे घर में जाती हूँ ना जहाँ पर टेलीविजन चैनल्स ओटीटी की जगह फॉलो किए जाते हैं, तो रिमोट हाथ में आते ही ना स्टार प्लस पे उंगली जरूर जाती है, शायद इसी उम्मीद में कि कहीं वो पुराने दिन ही वापस आ जाए। हाँ, यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: मुबारक ईद मुबारक।

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एफएम।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
3: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
4: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
3: हेलो,
4: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए मैडम, डिस्टरबेंस अभी आ रही है।
3: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे
4: हैं? मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ, आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
3: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
4: है मोबाइल पे
3: और क्या,
4: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
3: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
4: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
3: आपको बताना चाहिए था ना
4: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यहाँ खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
3: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते हैं डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब?
4: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
3: आपका दिमाग खराब,
4: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
3: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
4: नवेद लिखिए, नवेद
3: आ रही है।
5: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा, मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोड़ो सा मजाक कर दिया आपके साथ।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द

0: import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
2: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
1: Relative se advice slow to kehte hain.
3: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge to future bright hoga.
1: Isiliye main aapke paas aaya hoon promotion fund ke liye, jiske liye aap 50% equity le sakte ho.
4: Bhai kya kar raha tu? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
5: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070-7687.
6: मुबारक
7: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन.

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉट।
1: Well, after a certain point, छोटी छोटी रातें मोहब्बत में लंबी नहीं हो जाती है मेरे दोस्त, उम्र का तकाजा भी होता है। And I tell you one thing, अगर आपकी छोटी छोटी रातें लंबी हो रही हैं और आप अक्सर नींद से जग जाते हो तो या तो अपना लिवर चेक करवाओ या फिर मैग्नीशियम की गोली सोने से पहले खाओ, सब ठीक हो जाएगा।
2: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
0: Midday मोहब्बत with सारा Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, this is me, Sara. आपकी 90s की यादों का पिटारा, जो कि आरजे तो है ही है, पार्ट टाइम घरेलू डॉक्टर भी हूँ मैं। हाँ, मतलब जहाँ कहीं मुझे कोई अच्छी चीज मिल जाती है ना हेल्थ रिलेटेड, तो मैं वो बात ना लोगों में बांट देती हूँ, अब वो घर वाले हो, दोस्त हो, ऑफिस वाले हो या फिर आप। क्योंकि मम्मा हमेशा कहा करती हैं कि खुशी बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम होता है। अब आप डिसाइड कर लो कि ये खुशी में आता है या गम में आता है। अपन तो आगे बढ़ते हैं विद मान ना मान करो गानों की पहचान, जहाँ पर रोज की तरह दो गाने मैं मिक्स करके आपके लिए चला देती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये जो दो गाने आप सुन रहे हो ये धुने कौन से गानों की है। तो जी, आज की धुने हैं कुछ यूं।

बस जी, डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता दो कि ये दो गानों की धुनें जो आपने अभी सुनी ये है कौन सी। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट। 89.6 89.6 मिर्ची। मुबारक ईद मुबारक।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: हाय सलाम कतर, दिस इज दिशा पाटनी ऑन 89.6 मिर्ची ऑनलाइन कतर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद. ईद मुबारक.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
4: Mubarak Eid Mubarak. Mubarak Eid Mubarak.
0: Gaano ki Eid. On Mirchi. It's hot.

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्ट।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: कयामत से कयामत तक मूवी के इस गाने के बारे में जब मुझे पता लगा ना तो कयामत आ गई। बाय गॉड
4: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
3: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा एंड कयामत से कयामत तक का ये गाना जब पहली बार मैंने सुना था ना तब मोहब्बत में मेरा दिल टूटा था और उसके बाद आज इस गाने को सुनकर मेरा दिल टूटा है। कौन से गाने की बात कर रही हूँ मैं, गिव इट अ लिसन।
5: अकेले हैं तो क्या गम है।
3: वेल दिस वॉज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय अ ट्रैक जो कि 1977 में रिलीज हुआ था बाय अ बैंड जिसका नाम था शैडोज और इस गाने को कहा जाता था रिटर्न ऑफ द अलामो। सुनिए जरा इस गाने को। मान गए किसे, आनंद मिलिंद और उनकी पसंद तीनों को। यू ट्यून इन विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा और मिर्ची इट्स हॉट।
6: बॉलीवुड बोल डाल Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
7: Only on Mirchi, it's hot.
8: रजा मुराद जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ।
9: देखिए मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था, पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
8: ओ वेल वेल रजा मुराद नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
6: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
7: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,

0: आइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एफएम।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
0: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आपको याद है वो अखबार के कोने में छिपी हुई क्रॉसवर्ड की पहेलियाँ?
3: नब्बे की गप्पे।
2: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नाउ यू ट्यून इन विद मी ऑन मिर्ची। और वो छोटी छोटी ब्लैक एंड व्हाइट ग्रिड्स जिनमें छुपे होते थे ढेरों सवाल और जवाब ढूंढने की वो एक्साइटमेंट, सुबह की चाय, पापा का अखबार पढ़ना और हम बच्चों का पेन लेकर उन खाली जगहों को भरने की कोशिश करना, कभी दिमाग से तो कभी थोड़ा बहुत चीटिंग करके। और मजा तो तब आता था जब कोई मुश्किल सवाल फंसा रहता था और पूरा घर उसे हल करने में लग जाता था। अरे भाई, 5 अल्फाबेट्स का वर्ड है, पहला अल्फाबेट है क से, बताओ तो सही। और फिर जैसे ही सही जवाब मिलता ना, लगता जैसे कोई बड़ी सी जंगी जीत ली हो। आज के डिजिटल दौर में भले ही मोबाइल पर गेम्स की भरमार हो, लेकिन उस क्रॉसवर्ड का जो क्रेज था ना, वो कहीं गुम सा हो गया है। क्या आपको भी वो पुराने दिन याद आते हैं? कौन सा क्रॉसवर्ड क्लू था जिसे हल करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया करता था, बताइए ना हमें। मिलकर फिर से उन सुनहरी यादों को जी लेते हैं। DM करो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून रहो विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: मुबारक ईद मुबारक, मुबारक
0: गानों की ईदी ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: खाइए और सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एफ एम।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: बना
2: मुर्गा मुर्गा वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
4: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
5: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे वो उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
4: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
5: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
4: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
5: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आप कहाँ खड़े हो पहले भी बताओ ना मेरे को।
4: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
5: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
4: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
5: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
4: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
5: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
4: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
5: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
4: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
5: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ियां आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आपको पा रहा हूँ।
4: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
5: किसकी डेथ हो गई सर?
4: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
5: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नहीं है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
4: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
5: मैं कहाँ रहा हूँ,
4: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
5: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
4: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने आ रहा है, परेशान हूँ मैं।
5: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
4: यार।
5: थैंक यू।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
7: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
1: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
8: Mirchi Ganuki ED. Only on Mirchi. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear school ke last period.
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हें याद करते ही ना दिल में एक अजीब सी गुदगुती और सुकून भर जाता है। तुम वो थे जिसका इंतजार पूरे दिन की थकान के बाद हर दिल को रहता था। हम सबकी बॉडी लैंग्वेजेस लास्ट पीरियड तुम्हारे आते ही ना बदल सी जाया करती थी। एक अलग सा इम्पेशेंस नजर आ रहा होता था हमारी बॉडी लैंग्वेज के अंदर कि कब ये घंटी बजे और कब हम स्कूल से निकले। तुम वो आखिरी घड़ी नहीं हुआ करते थे, आजादी की दस्तक हुआ करते थे। तुम वो खिड़की थे जिसके पार शाम की हवा, दोस्तों की खिलखिलाहटे और घर में मम्मा इंतजार कर रही होती थी। और तुम्हारे बाद की वो घंटी, हाय क्या कहे उसके बारे में। वो तो ऐसी थी जैसे किसी कैदी को बेल मिल गई हो। वो तो ऐसी थी जैसे कि कानों में कोई खूबसूरत सा म्यूजिक पड़ गया हो। और उस घंटी को सुनने के साथ ही हम सारे के सारे क्लासमेट्स एक साथ कहा करते थे, ये जैसे कि अगले दिन स्कूल ही ना हो। लेकिन यही तो बात थी तुम्हारी कि तुम वो एक पल थे जिसको हम पूरी तरह से इतनी खुशी से जिया करते थे विदाउट रियलाइजिंग बचपन की मासूमियत में कि कल फिर स्कूल आना है, कल फिर वही चक्का चलेगा। इतनी खुशी का एहसास तो आज भारी भरकम जेबों के साथ भी नहीं होता है जितना कि तुम्हारे उस पल में हुआ करता था। जैसे ही तुम्हारे आखिरी पल आया करते थे ना लास्ट पीरियड, तो हमारे दिल की धड़कनें भी हमें कहा करती थी कि बस थोड़ी देर और फिर उड़ जाना है तुम्हें तुम्हारी दुनिया में। कभी कभी तो कुछ टीचर्स आखिरी पल तक पढ़ाती रहती थी, लेकिन जहाँ घंटी हमने सुन ली तो हमें तो और कुछ ना नजर आता और ना ही कुछ सुनाई दिया करता था। लेसन का वो आखिरी चंक हमेशा ही अनरिजॉल्व्ड रह जाया करता था। तुम्हारे बाद तो और मजे आया करते थे, दोस्तों के साथ हाथ डालकर निकल जाया करते थे, कभी समोसे की दुकान पर तो कभी सीधे बस में, और कभी यूं ही बेमकसद घूमते रहा करते थे। वैसे एक बात बोलूं, तुमसे विदा लेना भी कभी आसान नहीं था। स्कूल का वो आखिरी दिन जब तुमसे आखिरी बार मिले थे ना, और वो घंटी जब आखिरी बार सुनी तो एकदम से झटका लगा और ख्याल आया कि ये वो पल था जो इतने सालों से हम स्कूल में एंजॉय किया करते थे, जिसकी राह तका करते थे। लेकिन वो दिन जब तुमसे आखिरी बार मुलाकात हुई थी और आखिरी बार स्कूल की वो बेल बजी थी छुट्टी का ऐलान करने के लिए, वो दिन मुझे आज तक कभी पसंद नहीं आया। उस दिन मुझे बिल्कुल एक्साइटमेंट नहीं हुआ कि स्कूल खत्म हो गया है, क्योंकि उस दिन स्कूल वाकई खत्म हो गया था। ये वो दिन नहीं था हर रोज की तरह जब अगले दिन फिर स्कूल आना होता था और फिर वही चक्का चलाना होता था। ये वो दिन था जिस दिन के बाद से हमने असल दुनिया में कदम रख दिया और मासूमियत वो क्या होती है वो सब भूल गए। अब जिंदगी के इस स्कूल में तुम्हारे जैसे उस आखिरी पीरियड की कोई जगह नहीं होती। यहाँ छुट्टी की घंटी नहीं बजती, लेकिन यकीन मानो तुम अब भी यादों की क्लास में रोज आते हो और वही पुराना सुकून दे जाते हो। तुम्हारी प्रतीक्षा में परीक्षा देती तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।
3: मिर्ची गानों की ईडी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट और आप सुन रहे हैं मिर्ची।
4: विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी ईद।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
5: Mirchi Ganuki ED. Only on Mirchi. It's hot.

0: वाइब सेट हो गई है, मिर्ची पर कानों की ईदी जो मिल रही है।
1: Don't stop, can I win?

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनियन मिर्ची इट्स हॉट
1: सारा जमाना सारा का दीवाना
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: दिल चाहता है ये वो मूवी है जिसको ना सिर्फ बार बार देखने का दिल चाहता है बल्कि इसके गाने भी बार बार सुनने का दिल चाहता है। और इसी के साथ शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना इज कैसेट के साइड ए का तीसरा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
3: वो लड़की है कहाँ? वेल, इस सवाल का जवाब काफी सारे लड़कों को तब से लेकर अब तक मिल चुका होगा और काफी सारे अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रहे हैं। लेकिन कुछ भी कहो, ये गाना तब बना था, आज तक भी इसकी रेलेवेंस है एंड इसका म्यूजिक वो भी पुराना नहीं हुआ है। शंकर एहसान लॉय का कंपोज किया गया ये गाना जिसको लिखा जावेद साहब ने है। वेल, ये गाना इज अ ब्यूटिफुल वन, अ पेपी वन एज वेल एंड ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग वॉज द कोरियोग्राफी ऑफ दिस गाना विच वॉज डन बाय फराह खान। ये स्टेप इतना हिट हुआ ना कि तब से लेकर आज तक जब भी कभी ये गाना घर की पार्टी हो या फिर कोई पब हो या फिर स्कूल हो या फिर कॉलेज हो या फिर ऑफिस हो, जब भी जहां कहीं बजता है, छोटे से लेके बड़े तक को इस गाने का जो सिग्नेचर स्टेप है वो पता है और सब वही करते हैं। इनफैक्ट अगर ये गाना कभी कहीं फ्लैश मॉब में चल जाए ना तो वो जो सिग्नेचर स्टेप है वो तो सबके सब एक साथ निकाल लेंगे विदाउट एनी डाउट। हालांकि दिस फिल्म एट दैट टाइम वॉज वेरी मॉडर्न, इनफैक्ट आज भी जब इसको देखते हैं तो बड़ी मॉडर्न लग रही होती है। और इस गाने के अंदर काफी सारी जगहों पे 90s का फैशन कॉपी किया गया है, डांस हो या फिर कपड़ों के लुक हो, ये काम तो सिर्फ फराह खान ही कर सकती थी आई गेस। और ये गाना गाना तो है ही मगर बड़ा ही डायलॉग बाजी वाला गाना है कि यहाँ पर लड़का जो है वो लड़की से बात भी कर रहा है, एक ख्याल भी बता रहा है और फिर बाय द एंड ऑफ द सॉन्ग अपने जज्बात भी बयां कर पा रहा है और सारा का सारा जो है वो बड़ी म्यूजिकली इन अ डायलॉग फॉर्म हो गया है। जैसे मान लो अगर मैं ये कहूँ कि मेरे ख्वाब में तुम ही तो हो, जान लो मेरा अरमान है कि मेरे साथ ही अब तुम रहो, जिस पर लड़की कहती है कि मुझे तुमने क्या ये समझा दिया, मेरे दिल को जैसे धड़का दिया, मेरे तन बदन को पिघला दिया, वो सुनाए दास्तां। ये काम जावेद साहब जितनी स्मूथली कर लेते हैं ना, आई एम रियली सॉरी फॉर द न्यू राइटर्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना स्मूथ काम मैंने नए राइटर्स में नहीं देखा है। और इस गाने को इतना पसंद करती हूँ तो क्यों ना इस गाने को आपके लिए चला ही देती हूँ। जाते जाते ये गाना आपके लिए और इसी के साथ मैं कहती हूँ हमें रही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
4: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
5: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
6: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है और दूसरी बात अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
5: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
4: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची घड़ी में शाम के बज गए चार।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची के सभी लिसनर्स को ईद अल अधा की दिल से मुबारकबाद। आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, आपकी जितनी भी मुरादें हैं, वो पूरी दिल से पूरी हो एंड आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां हैं और आप औरों की जिंदगी में खुशियां जो हैं वो बस बांटते ही रहें। अभी फिलहाल टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट। एंजॉय
2: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
2: अथॉरिटी से बनवाया था, शेख सराय से।
1: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
2: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
1: किस दलाल से बनवाया था आपने? नाम याद है उसका?
2: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
1: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
2: तो कोई बात नहीं होती, दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
1: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
2: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
1: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
2: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
1: नहीं, मेरे को दिए आपने?
2: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
1: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया।
2: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
1: अरे उन्होंने क्या कहा था यार, उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चालान कट जाएगा। ठीक है,
2: साहब जी को ऐसे तो गलत बात है, साहब जी कैसे ऐसे कैसे हो सकता है?
1: ऐसे कैसे हो सकता है यार, उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए। आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
2: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
1: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछो भाई।
2: उसने कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने तो कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, इतने सालों से बना रहे हैं।
1: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
2: हाँ जी।
1: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं, मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने बस सूचित करना था, करना था, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं। गलती होगी साहब जी, कान पकड़,
2: पकड़ ले।
1: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार, इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकड़ू को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
3: और हम जहां चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: मिर्ची गानों की ईदी, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay. Sham Shandar, brought to you by Kim's Health Medical Center.
1: Arz kiya hai.
2: Irshad.

0: iPay payments ka wah tarika. With iPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the iPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. iPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
0: Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar.
2: Let's do the iPay.
3: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
4: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
5: Hi everybody, मैं हूँ शाहरुख खान.
6: This is Mirchi and it's hot. आप सबको ईद मुबारक.
3: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक.
4: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
7: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
8: Mirchi गानों की ईदी. Only on Mirchi, it's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: वैसे इस वक्त ईद का जश्न कतर के कोने कोने में मनाया जा रहा है एंड सूरज चाचू भी इसे खुद को ना दूर ना रख पाए।
2: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
3: वेदर अपडेट।
1: वेल, अगर वेदर की अपडेट को आप तक पहुंचाने की कोशिश करें तो भाई एज यूजुअल इन दिनों दिन जो है गर्मा गर्म अपना काम कर ही रहा है। टेम्परेचर्स अराउंड 41 टू 43 डिग्रीज थ्रू आउट द डे, इसलिए इस वक्त अगर आप फैमिली विजिट्स, ईद लंचेस या आउटडोर प्लान कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखें कि जहां भी जाएं खुद को फुल्ली हाइड्रेट करके जाएं एंड साथ ही डायरेक्ट सन एक्सपोजर से खुद को जरा बचाने की कोशिश करें। लेकिन यार बात इतनी है ना कि ईद की वाइब जो है कुछ इतनी खास है, घरों की रौनक, वो बच्चों की एक्साइटमेंट एंड ढेर साना बेहतरीन हाय वो लजीज खाना, कि इन सब बातों में गर्मी में ठंडी का एहसास जो है ना कहीं कलेजे की ठंडक के जरिए हमें हो ही जा रहा है। तो बस स्टे सेफ, स्टे कूल एंड दिल खोलकर सेलिब्रेट करते रहिए एंड अपनी जिंदगी में वो ठंडक को बनाए रखने के लिए सुनते रहिए कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन। हाय, हॉट जरूर है लेकिन कलेजे को ठंडक दे ही देता है मिर्ची बंदी का नाम अंशु।
3: वेदर चेक ब्रॉट टू यू बाय RSL ग्रुप ऑफ कंपनी। अब पाओ कतर में डिलीवरी राइडर्स और ड्राइवर की जॉब। फॉर ब्राइट फ्यूचर कॉल नाउ 3100813।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: बजाते रहे गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
4: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
5: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश जोश जोश।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
5: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
4: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
5: मैं मुझे नहीं पता।
4: हम साथ
5: कौन
4: साथ
5: सी है? ओ हाँ, हम साथ साथ है। और
4: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
5: ये भाई बहन थे। वेलकम।
3: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: This Eid, the magic comes alive at Abu Sidram Mall. Join Layali Eid at Abu Sidram Mall on 27th, 28th and 29th May from 6 p.m. to 10 p.m. and experience the spectacular Aladdin show, live entertainment, kids activities and much more. Abu Sidram Mall, your Eid destination.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: वेल, आप सभी को ईद अल अधा की बहुत बहुत मुबारकबाद। इतना ही कहना चाहूंगी, आज का दिन सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं बल्कि इमोशंस का सेलिब्रेशन है। वेल, इतना ही याद दिलाना चाहूंगी कि लाइफ में सबसे बड़ी चीज होती है ग्रैटिट्यूड, शुक्र अदा करना उन सभी चीजों के लिए जो हमारे पास है। तो बस आज दिल खोल के दुआएं मांगी, अपनों को गले लगाइए, किसी की मुस्कुराहट की वजह जरूर बनिए। इसके साथ ही ये याद रखें, हैप्पीनेस बिकम्स इवन मोर ब्यूटीफुल व्हेन इट इज शेयर्ड। तो बस खुशियां बांटते रहें, खुशियां फैलाते रहें। अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट। एंजॉय।
2: It's hot, hot. बिरयानी की खुशबू, सेवई की स्वाद, ईद की सबको मुबारकबाद।

0: सुनते जाइए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची एसॉन्ट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊँ?
2: अरे कोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
3: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi Ganuki Eidi. Only on Mirchi. It's hot.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार brought to you by KIMS Health Medical Center।
2: मुबारक ईद मुबारक। वेल मिर्ची के सभी लिसनर्स को ईद अल अधा की बहुत सारी मुबारकबाद। वेल इतना ही कहना चाहूंगी, आपकी जिंदगी में खुशियां आए और ढेर सारी खुशियां आए। देखो यार, इस ईद आपको एक काम करना है, जरूर करना है, सोशल मीडिया में जरा कम सोशल होना है, सही मायने में अपने घर वालों के साथ, दोस्त यारों के साथ कनेक्शन मेंटेन करना है। क्या ना, हम अक्सर बिजी हो जाते हैं सोशल मीडिया में ये दिखाने में कि हम कितने व्यस्त हैं, हमारा दिन कितना अच्छा जा रहा। भैया, उस दुनिया से जरा बाहर निकले और असल दुनिया जो आपकी जिंदगी में इतनी खूबसूरत रंग लेकर आई है, ईद की खुशियां लेकर आई है, उसे दिल से जिए। ऐसे जिए कि सोशल मीडिया में ना सही लेकिन अपने दिलों में उन यादों को आप हमेशा संजो कर रखें। क्या कहती पब्लिक। स्टेडियो यूनिवर्सिटी इट्स हॉट। बंदी का नाम अंशु।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय KIMS हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 89.6 89.6 हेलो
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना। कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें।
4: नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
4: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
4: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
4: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
4: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
4: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट।

0: गर्लफ्रेंड्स
1: से ज्यादा करते हैं सर. किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से प्लीज बताएंगे.
0: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है. और क्या
1: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे, जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
0: हाय हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो.
1: हाय हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो. तो सर एक ही बार में पूछने ना आपको क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की. तो सर आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं. अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा. वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड.
2: सर
3: इतना गुस्सा मत होइए सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पायल ने. उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें. तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं.
0: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है.
3: नहीं सर मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं. मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. कतर में हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी है. क्या आपको तलाश है एक अच्छी कंपनी की?
5: तो इंतजार खत्म. RSL ग्रुप ऑफ कंपनीज लेकर आया है एक सुनहरा मौका स्टेबल इनकम के साथ.
4: अभी कॉल करें 3100813.
6: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू.
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
8: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
9: खूब मिलेगा, मिलेगा.
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
4: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर.
11: मिर्ची गानों की ईदी. Only on Mirchi, it's hot.

ईद की पार्टी आपकी तरफ से और सेलिब्रेशन खास बनाने के लिए गानों की ईदी मिर्ची की तरफ से।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: चलिए इस ईद आपकी जिंदगी में थोड़ी ज्यादा खुशियाँ ले ही आते हैं। मिर्ची की सभी लिसनर्स को ईद मुबारक, ईद की बहुत बहुत बधाई। वेल, अगर आज के एक्सचेंज रेट्स को देखने की कोशिश करें तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.22, पाकिस्तानी रुपीज 76.89, बांग्लादेशी टका 33.68, श्रीलंकन रुपीज 89.77 एंड इसके साथ ही नेपाली रुपीज 41.93। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां। लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची इट्स हॉट। Enjoy, बंदी का नाम अंशु।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओलियन मिर्ची इट्स हॉट
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर
2: 89.6 89.6
1: इट्स हॉट
0: मिर्ची गानों की ईदी ओलियन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: फिर खाली हाथ चले आए. मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: नमस्कार, दिस इज रवीना टंडन. आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात. आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
0: Only on 89.6 मिर्ची 1. It's hot.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
3: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसे चॉकलेट्स खत्म कर दे कभी, और आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
2: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot. Sham Shandar, brought to you by Kim's Health Medical Center.
4: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: मिर्ची की सभी लिस्टर्स को ईद अल अधा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी जिंदगी में खुशियां रहें और ढेर सारी खुशियां रहें। आप सबके लिए बस यही दुआ है यार। हम ना कभी कभी जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, कभी डेडलाइंस, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि धीरे धीरे उन लोगों से कनेक्ट करना कम कर देते हैं जो कभी हमारी पूरी दुनिया हुआ करते थे। यार वो कजिन्स जिनके साथ बचपन में पूरे समर्स हमने गुजारे, वो रिलेटिव्स जिनके घर जाए बिना हमारा दिन कभी पूरा ना हुआ करता था, वो हंसी, वो शरारतें, वो फैमिली डिनर्स, यार पता ही नहीं चला कि कब ये सारी बातें मेमोरीज बन गई। वाले इतना ही कहना चाहूंगी इस ईद, क्यों ना एक काम करें, आज किसी अपने को कॉल करें, कोई पुरानी बात एक बार फिर से याद करें और वो बचपन वाली स्टोरीज को फिर से दोहराई जाए। तो वही हंसिए, मुस्कुराइए, अपनों के साथ खूब सारा वक्त बिताइए, यानी जितने खूबसूरत पल हमें जिंदगी में मिले हैं उन्हें खूब दिल से सेलिब्रेट करिए। स्टूडियो नंबर 8 हॉट बंदी का नाम अंशु।
1: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
0: मिर्ची गानों की ईदी। Only on Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
1: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के 6 एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

0: DJ Bridget.
1: भाई इतनी गर्मी है, टेम्परेचर ऑलरेडी हाई चल रहा है, ऊपर से एंट्री मार रही है क्लब मिर्ची. हेलो एंड वेलकम टू द कूलेस्ट पार्टी डेस्टिनेशन, दैट्स मिर्ची एंड दिस इज डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका सेटिंग द हॉटनेस लेवल टू अ डिफरेंट हाई. एसी काम करना बंद कर दे लेकिन क्लब मिर्ची काम करना कभी बंद नहीं करेगी. पार्टी मूड चालू करते हैं फुल पावर पे. Welcome to Club Mirchi and officially summer se bhi ye hai zyada hot. Let's go.
0: DJ Richard, you are not ready for this. Nah, dude.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: मैडम, डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ, नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो,
3: एक सेकंड मैडम होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है, यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके। अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
3: हैं, मोबाइल पे?
2: और क्या,
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब?
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
2: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा, मैंने आपका मुर्गा बनाया। छोड़ो,
3: तुम्हें मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब?
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है, पहले डिसाइड करिए।
2: अपना नाम बता, मैं तेरी कंपनी।

0: Cocoroco.
1: Mirchi Morga, na vedet ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
4: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने. हिट गाने
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन.
7: इट्स हॉट.
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो.

टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंतिका. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर. इतनी गर्मी है कि लग रहा है सन भी ओवर एक्टिंग कर रहा है. ऊपर से क्लब मिर्ची का टेम्परेचर अलग ही चल रहा है, तो इसी को बढ़ाते हैं.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन. Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the
1: iPay. Arz kiya hai.
2: Irshad.

0: IPay payments ka wah tarika. With IPay, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, seedha, no tension. Check the IPay app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. IPay, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: हाय, दिस सलमान खान, और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
4: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
5: Ladies and gentlemen.

वेलकम बैक वंस अगेन डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ। दो तरह के लोग होते हैं समर में, एक एसी के सामने बैठे होते हैं और दूसरे क्लब मिर्ची के स्पीकर के सामने हेड बैंग कर रहे हैं। विच टाइप आर यू? आई एम श्योर सेकंड। लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: रजा मुराद जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स स्टैंडर्ड में मैं 2 बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: ओ वेल वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood Boldal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
5: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.

सुनते रहिए गानों की ईदी ओलियन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची गानों की ईदी ओलियन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची घड़ी में बज गए 7 एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीम मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ। वेदर ऐप बोल रहा है कि हीट वेव और हम बोल रहे हैं कि बीट वेव। इधर बीपीएम भी टेम्परेचर से ज्यादा है बॉस। क्लब मिर्ची इट इज विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका। चले फिर

जाने जा ढूंढता तू ओ मेरे दिल के चैन, रोमांस सो क्लासिक, इवन ऑटो ट्यून टेक्स नोट्स, लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. Navid wala murga. Mirchi, murga. Murga.
3: हेलो
4: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
3: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
4: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
3: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
4: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
3: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
4: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका गड्ढो पहले भी बताओ ना मेरे को।
3: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
4: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
3: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
4: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
3: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
4: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
3: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
4: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
3: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
4: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आपको पहले रहा हूँ,
3: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
4: किसकी डेथ हो गई सर?
3: मेरे भाई की डेथ हो गई।
4: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
3: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
4: मैं कहाँ रहा हूँ,
3: सॉरी, आप अभी कहाँ रहो?
4: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
3: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, इसको परेशान हूँ मैं, जो हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
4: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
3: यार।
4: थैंक यू।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: क्या आप सोच रहे हैं कि व्हाट डू आई डू विद दैट ओल्ड गोल्ड बैंगल इन माय लॉकर? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस, सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके। और अब एक और ग्रेट न्यूज, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
7: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
8: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
9: बहुत कुछ होगा।
10: Qatar का number one radio station.
11: 89.6 FM, Mirchi 1.
12: It's hot.
13: Ladies and gentlemen, we are gonna go
14: on a ride.

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन। Powered by iPay. Best rate, no stress. iPay wallet ka bharosa. Download kijiye aaj hi. iPay, the best remittance rate in Qatar. Let's do the iPay.
1: Kya aap soch rahe hain ki what do I do with that old gold bangle in my locker? To Malabar Gold and Diamond Smart Exchange ke saath, exchange your old 22 karat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs, sirf making charges pay karke. Aur ab ek aur great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
3: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
4: दिस इज तापसी पन्नू,
2: आप सभी को ईद मुबारक।
5: इट्स हॉट।
2: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
3: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 मिर्ची 1। It's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go!

बाहर धूप फुल एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन हमारा प्लेलिस्ट हॉट भी कूल भी, सर्दी गर्मी एक साथ। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वेलकम बैक पीप्स।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
4: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
5: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश, जोश, जोश।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
5: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई।
4: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
5: मैं मुझे नहीं पता।
4: हम साथ
5: कौन
4: साथ
5: है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और
4: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
5: ये भाई बहन थे। वेलकम।
3: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुपर क्रश मिल जाए या ना मिले, क्लब मिर्ची पे डांस रश मिलना गारंटीड है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका, दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर।
1: साहेबा आए घर का है ना, ऐसे तो सता

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है।
1: सो आई रिसेंटली मेट अ गर्ल थ्रू अरेंज मैरिज सेटअप, यू नो शी इज गुड बट शी अर्न्स वे मोर देन मी, आई फील देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या करूं।
2: तो तुम ये पूछ रहे हो कि वो तुमसे ज्यादा कमाती है तो मैं क्या करूं? शर्म करो शर्म।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
4: मिर्ची घड़ी में रात के 8 की पारिंग विद क्लब मिर्ची।
5: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are going to go.

पार्टी रूल सिंपल है बॉस, अगर गर्मी नहीं लग रही है तो डांस करो, हीट योर बॉडी, और अगर गर्मी लग रही है तो भी डांस करो। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ, लेट्स गो।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है. मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ. रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन.
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं.
3: Hi Mirchi listeners, this is Jacqueline Fernandez.
4: Wishing all of you guys a very very Eid Mubarak.
5: It's hot.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात. आपको भी ईद मुबारक.
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो.
0: Only on 89.6 Mirchi 1.
6: Mirchi 1.
0: It's hot.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bordal.
2: Only on Mirchi, it's hot.

अब इतनी गर्मी है कि आइसक्रीम भी पिघलते पिघलते बोल रहा है कि बॉस आज मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पे पार्टी करना कभी नहीं छोड़ते। इस वीकेंड पे भी क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका।

बॉस, अगर गर्मी नहीं लग रही है तो डांस करो, हीट योर बॉडी, और अगर गर्मी लग रही है तो भी डांस करो। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ, लेट्स गो।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are going to go.

कैलोरीज काउंट मत करो यार, बस बीट्स काउंट करो. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ. इफ यू लाइक व्हाट डीजे रिचर्ड डज विद म्यूजिक, फॉलो डीजे रिचर्ड ऑफिशियल.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
1: हाँ।
2: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें। नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
3: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
3: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
3: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
3: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
3: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं?
1: क्लाइंट्स और गर्लफ्रेंड्स वगैरह।
3: गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं सर? किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
3: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
3: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़ने की? तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर
4: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे आपकी गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
4: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा आपसे, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
7: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
9: 89.6
10: FM, Mirchi 1. It's hot.
11: Ladies and gentlemen, we are gonna go
12: on a ride.

0: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
1: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
2: हाय दोस्तों, मैं हूँ मीका सिंह और मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
1: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।

ऑफिशियल टेम्परेचर 40 हो या 45 डिग्रीज, क्लब मिर्ची का मूड साइंटिफिक कैलकुलेशन के बाहर है कि नहीं? क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची अयोंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अजय अतुल द म्यूजिक कंपोजर डुओ एंड सिबलिंग्स, बचपन में आप कौन सी गेम्स खेला करते थे?
4: पहले तो हम लोग गेम खेलते थे,
5: वीडियो गेम्स बंद हो गया, अभी टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात, अभी इतना एडवांस सब कुछ आ गया है, हम लोग 8-8, 10-10 घंटा पहले कंप्यूटर गेम्स पे लगे रहते थे।
4: अभी कंप्यूटर गेम्स के लिए जो कंप्यूटर चाहिए उससे कम कॉन्फ़िगरेशन वाला हमारे म्यूजिक के लिए काफी होता है।
3: क्या बताएं अजय अतुल, महंगाई बढ़ तो गई है लेकिन आपका म्यूजिक सुनकर कम चुभती है। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
6: Ladies and gentlemen.

के एक्सक्यूजेस, दोनों का लेवल हर साल अनएक्सपेक्टेडली बढ़ ही जाता है क्लब मिर्ची पे. हॉटनेस ज्यादा और पेशेंस कम. लेट्स गो.

हाई था, एनर्जी भी हाई थी और टेम्परेचर तो पूछो ही मत। पार्टी खत्म हो सकती है लेकिन वाइब का आफ्टर इफेक्ट वो तो चलेगा सुबह तक, है कि नहीं। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे यार डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ क्लब मिर्ची पे लौटेंगे, क्योंकि समर खत्म हो सकता है लेकिन

0: भाई इतनी गर्मी है, टेम्परेचर ऑलरेडी हाई चल रहा है, ऊपर से एंट्री मार रही है क्लब मिर्ची। हेलो एंड वेलकम टू द कूलेस्ट पार्टी डेस्टिनेशन, दैट्स मिर्ची एंड दिस इज डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका सेटिंग द हॉटनेस लेवल टू अ डिफरेंट हाई। एसी काम करना बंद कर दे लेकिन क्लब मिर्ची काम करना कभी बंद नहीं करेगी। पार्टी मूड चालू करते हैं फुल पावर पे। Welcome to Club Mirchi and officially summer se bhi ye hai zyada hot. Let's go.
1: DJ Richard, you are not ready for this.
2: Not ready.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. La vida bala murga. Mirchi murga.
2: Hello.
3: मैडम डिस्टरबेंस आ रही है क्या अभी?
2: हेलो, डिस्टरबेंस तो आ रही है, कौन बोल रहे?
3: एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। छोटू नीचे सीढ़ी सही पकड़ यार। हाँ नीचे सीढ़ी सही पकड़ ले।
2: हेलो,
3: एक सेकंड मैडम, एक सेकंड होल्ड करिए। मैडम डिस्टरबेंस अभी आ रही है?
2: कौन बोल रहे, कहाँ से बोल रहे?
3: मैं खंबे पे से बोल रहा हूँ, लाइन मैन बोल रहा हूँ। आपके फोन की तार चेक कर रहा हूँ, डिस्टरबेंस इसलिए आ रही है। यहाँ पे कुछ तार मिले पड़े हैं आपके, अभी भी आ रही है?
2: आप पागल हो गए, मोबाइल पे फोन लगा रहे हैं और डिस्टरबेंस आ रही है।
3: मोबाइल पे
2: और क्या?
3: ये आप अभी मोबाइल से बात कर रही है?
2: तो आपको नहीं पता मोबाइल नंबर है?
3: आपने पहले क्यों नहीं बताया मोबाइल से बात कर रहे हैं?
2: आपको बताना चाहिए था ना
3: यार, आपको पहले मैडम बताना चाहिए था। यार खंबे पे चढ़ा हुआ हूँ, आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, मैं डिस्टरबेंस ढूंढने जा रहा हूँ तार से।
2: आप खंबे पे चढ़े हुए हैं और मेरे को बोलते डिस्टरबेंस आ रही है, दिमाग खराब।
3: ये दिमाग खराब की क्या बात है?
2: आपका दिमाग खराब,
3: आपका दिमाग, आपका फोन खराब है, मेरा दिमाग खराब है। पहले डिसाइड करिए,
2: अपना नाम बता। मैं तेरी कंपनी
3: नवेद लिखिए, नवेद
2: आ रही है।
4: पायल, में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। डिस्टरबेंस भी गई, मैं भी चला जाऊंगा। मैंने आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक कर दिया आपके साथ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। 89.6 मिर्ची।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन,

to Club Mirchi with DJ Richard and Mirchi Oyontika. This is the sound of the future. इतनी गर्मी है कि लग रहा है सन भी ओवर एक्टिंग कर रहा है. ऊपर से क्लब मिर्ची का टेम्परेचर अलग ही चल रहा है, तो इसी को बढ़ाते हैं.

0: 91.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: Hi, this is आमिर खान।
4: सभी दर्शकों को मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा।
5: It's hot.
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक वंस अगेन डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ। दो तरह के लोग होते हैं समर में, एक एसी के सामने बैठे होते हैं और दूसरे क्लब मिर्ची के स्पीकर के सामने हेड बैंग कर रहे हैं। विच टाइप आर यू? आई एम श्योर सेकंड। लेट्स गो।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अभय देओल, हर बच्चा बचपन में कुछ ना कुछ चोरी जरूर करता है. What did you steal in your childhood?
4: एक बार मैंने बॉबी के चॉकलेट्स खा लिए थे जो कबर्ड में पड़े हुए थे. मैं बीमार हो गया था, मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, बॉबी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उसके चॉकलेट्स खत्म कर दिए. कभी आज तक बोला नहीं कि वो मैं था.
3: What a way to confess, अभय देओल. अब सिर्फ बॉबी को ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि आपने कब और कहां चोरी की थी एज ए चाइल्ड. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
2: Bolda. Only on Mirchi, it's hot.

0: ईद की पार्टी आपकी तरफ से और सेलिब्रेशन खास बनाने के लिए दानों की ईदी मिर्ची की तरफ से।
1: Yeah, the meat bros. Just tell me.

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मेरे हस्बैंड ऑफिस से रोज लेट आते हैं और खाना खा के सीधा सो जाते हैं, क्या करूं?
2: अरे मैडम, उनको बोलो खाना खा के सीधा ना सोए, बाएं साइड सोए, उससे क्या हेल्थ भी अच्छी रहेगी।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ। वेदर ऐप बोल रहा है कि हीट वेव और हम बोल रहे हैं कि बीट वेव। इधर बीपीएम भी टेम्परेचर से ज्यादा है बॉस। क्लब मिर्ची इट इज विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका। चले फिर

में जा ढूंढता तू ओ मेरे दिल के चैन, रोमांस सो क्लासिक इवन ऑटो ट्यून टेक्स नोट्स, लव मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो भाई मांजू, मैं लाइसेंस अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने ये लाइसेंस अपना कहाँ से बनवाया था?
3: अथॉरिटी से बनवाया था, शेखराय से।
2: अथॉरिटी से किससे बनवाया था?
3: जी वो दलाल जो होते हैं उनसे बनवाया सर।
2: किस दलाल से बनवाया था? अपने नाम याद है उसका?
3: प्रवीण कुमार ऐसे करके नाम था उसका।
2: प्रवीण कुमार को अरेस्ट कर लिया है सुबह, और मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ, हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सबको कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: तो कोई बात नहीं होती, कैंसिल हम दलाल को पकड़ेंगे सर, हमें क्यों पकड़ेंगे?
2: नहीं भाई, दलाल को क्यों पकड़ेंगे? आपने पैसे किसको दिए थे?
3: तो बनाकर तो उसने था, अथॉरिटी से तो बन के हमारा ही आया था।
2: नहीं, आपने मेरे को पैसे दिए थे?
3: पैसे तो पूरे दिए थे उसको।
2: नहीं, मेरे को दिए आपने?
3: नहीं, आपको तो नहीं दिए।
2: तो बस वही मैं कह रहा हूँ कि आपने जब उसको पैसे दिए हैं और आप उससे ही वास्ता रखते हैं, हम कुछ आपके लगते ही नहीं है, तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है भाई। उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, वो तो अरेस्ट हो गया है।
3: नहीं, उन्होंने कहा था कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी बनवा लो।
2: अरे उन्होंने क्या कहा था यार? उन्होंने कहा था तो उनसे, अरे उन्होंने कहा था रिश्तेदार लगा हुआ है भाई वो तेरा, जो ऐसे मेरे से बहस कर रहा है। मैं कह रहा हूँ लाइसेंस कैंसिल हो गया, जल्दी से लाइसेंस बनवा ले भाई, वरना चला कट जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? उस वक्त नहीं सोचा था जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे आपकी सेवा के लिए, आप दलाल को पकड़ रहे हो, वहाँ पे एजेंट को पैसे दे रहे हो, लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो पकड़ा गया, उसने आपका नाम लिया, आपका बनवाया।
3: सर मैं दलाल से बात करूँगा, कैंसिल मत करो, मैं दोबारा कहाँ बनवाऊंगा?
2: कैंसिल मैं क्या जानू, उसे बनवाया था उससे पूछे भाई।
3: जिसने ज्यादा कुछ कहा नहीं था हमारे को, दलाल ने कुछ कहा नहीं हमको, कैसे प्रॉब्लम होगा? उसने कहा बस ठीक है चल जाएगा, सबका बनाते हैं, कितने सालों से बना रहे हैं।
2: तो भाई दलाल से कहा था ना आपने, दलाल से बात करी थी?
3: हाँ जी।
2: तो दलाल से जाके बात कर रहे भाई, मेरे से क्यों बात कर रहे हैं? मेरे से मेरी क्यों खोपड़ी गर्म कर रहा है? मैंने तो बस सूचित करना था, करने दे, मैं साहब को सूचित कर रहा हूँ कि वो तेरा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं।
3: गलती होगी साहब जी,
2: गलती होगी साहब जी। कान पकड़
3: पकड़ ले,
2: मेरे को दिख रहा है यहाँ से, मेरे को उल्लू बना रहा है यार। इधर आके मेरे ऑफिस में आके, मेरे ऑफिस में आके कान पकड़, और ऑफिस में कान पकड़ के थोड़ा सा झुक के मेरे साथ बोल कुकुड़ो को। हिमांशु, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ, तुम्हारा मुर्गा बनाना था, बना दिया। अब भाई ये जो दलाल है नहीं, वो एजेंट तो चला गया, अब आपको मेरे साथ प्यार से बोलना होगा एक बार। बोल दो, शर्म नहीं आनी चाहिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पगला।
5: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
4: और एड ब्रेक भी, मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
6: बार बार।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
7: 89.6
4: FM, Mirchi 1. It's hot.
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: 99.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजे अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: हाय सलाम कतर, दिस इज दिशा पाटनी ऑन 89.6 मिर्ची ऑनलाइन कतर एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद। ईद मुबारक।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
5: Ladies and gentlemen.

बाहर धूप फुल एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन हमारा प्लेलिस्ट हॉट भी कूल भी, सर्दी गर्मी एक साथ। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। वेलकम बैक पीप्स।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's Hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's Hot.
3: रजा मुराद, जब विलन्स की बात होती है तब अमरीश पुरी सर की बात होती है, ओम पुरी सर की बात होती है, बट फॉर मी यू आर द अल्टीमेट विलन। अब आप बताइए, आपके लिए हु वाज द अल्टीमेट विलन इन लाइफ?
4: देखिए, मैं हर अपने टीचर को विलन समझता था। पढ़ने में मैं बड़ा टफर था और सिक्स्थ स्टैंडर्ड में मैं दो बार फेल हुआ, तो स्कूल से मुझे दहशत होती थी और हर टीचर जो है मुझे विलन दिखाई देता था।
3: वेल, रजा मुराद, नाउ वी हैव अ कॉमन विलन इन आवर लाइफ। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood Boldal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi, it's Hot.

0: अगर क्रश मिल जाए या ना मिले, क्लब मिर्ची पे डांस रश मिलना गारंटीड है. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर.
1: साहेबा आए घर का है ना, ऐसे तो सता

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। ओ ला ला।

सुनते रहिए गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची गानों की ईदी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं, आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आ गए, वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो, जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आपको पा रहा हूँ,
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
3: मैं कहाँ रहा हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ रहो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, इसको परेशान हूँ मैं।
3: आशीष, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: हाय, मैं हूँ आलिया भट्ट और आप सुन रहे हैं मिर्ची।
4: विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी वेरी हैप्पी ईद।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अक्षय कुमार यहाँ पे आपके साथ में गेम खेलते हैं। हम आपको दो एक्टर्स का नाम देंगे, आपको मुझे बताना है किस फिल्म में वो भाई भाई थे या भाई बहन थे। रेडी?
4: शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय।
5: वो उनकी थी, एक सेकंड बोलना नहीं है, दो सेकंड, एक सेकंड रुकना। जोश, जोश, जोश।
4: सलमान खान एंड सैफ अली खान।
5: सलमान खान एंड सैफ अली खान, वो तो उन्होंने कौन से पिक्चर में भाई,
4: हर संडे को पिक्चर आती है सर ये वाली, आप तो नहीं देखते होंगे, हम तो देखते हैं मिडिल क्लास।
5: मैं मुझे नहीं पता।
4: हम साथ
5: कौन
4: साथ
5: सी है? ओ, हाँ, हम साथ साथ है। और
4: नाना पाटेकर, कटरीना कैफ,
5: ये भाई बहन थे। वेलकम।
3: देखा अक्षय कुमार ने कितना एंजॉय किया, आप भी एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड, बॉलीवुड, बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Ladies and gentlemen.

अब इतनी गर्मी है कि आइसक्रीम भी पिघलते पिघलते बोल रहा है कि बॉस आज मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पे पार्टी करना कभी नहीं छोड़ते। इस वीकेंड पे भी क्लब मिर्ची जा रही है।

बॉस, अगर गर्मी नहीं लग रही है तो डांस करो, हीट योर बॉडी, और अगर गर्मी लग रही है तो भी डांस करो। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ, लेट्स गो।

मेलोडीज काउंट मत करो यार, बस बीट्स काउंट करो. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका एक साथ. इफ यू लाइक व्हाट डीजे रिचर्ड डज विद म्यूजिक, फॉलो डीजे रिचर्ड ऑफ

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो।
2: हाय, अब अपने मोबाइल के बिल को आप आधा करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अपने बिल को आधा करना चाहते हैं तो हैश दबाइए। धन्यवाद। अगर आप मोबाइल बिल को आधा करना चाहते हैं तो कहिए हाँ, और नहीं करना चाहते तो कहिए ना।
1: हाँ।
2: कृपया लाइन होल्ड करें, हम आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर कर रहे हैं।
3: आपकी कॉल कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को ट्रांसफर हो रही है, कृपया लाइन पे रहें।
4: नमस्कार, दिस इज गौतम, हाउ मे असिस्ट यू?
1: कॉल आया है आपका बिल अदा करने के लिए।
4: यस सर, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
1: मीसम नाम है।
4: मीसम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका बिल महीने में कितना आ जाता है?
1: 1200 रुपए।
4: 1200, आप चाहते हैं इसको आधा कर दीजिए? वन सेकंड सर। सर, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ?
1: हाँ जी, 1 सितंबर 1980।
4: थैंक यू सर। सर, आपने बताया आपका बिल 1200 के करीब आता है, राइट?
1: जी
4: सर। आप मुझे बताएंगे ज्यादातर बातें आप किससे करते हैं? गर्लफ्रेंड से ज्यादा करते हैं। सर, किस तरह की बातें करते हैं गर्लफ्रेंड से, प्लीज बताएंगे?
1: नॉर्मली जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच होती है। और क्या
4: सर, जैसे कि एग्जांपल दे सकेंगे? जैसे आपने गर्लफ्रेंड को फोन करा तो आप क्या बात करते हैं उससे?
1: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो?
4: हाय, हाउ आर यू, कैसी हो, कहाँ पे हो? तो सर, एक ही बार में पूछनी है ना आपको, क्या पढ़ी है उसके पीछे पढ़नेगी। तो सर, आप एक चीज पूछिए ना, आप कॉलेज का भी पूछ रहे हैं, आप ये भी पूछ रहे हैं, क्या यार तमाशा तो आप खुद कर रहे हैं। अब बिल ज्यादा आएगा ही आएगा, वो तो एक तो तमाशा खुद बना रखा है, कह रहा है हाय हाउ आर यू गर्लफ्रेंड।
1: सर,
5: इतना गुस्सा मत होइए। सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मुझे आप ही की गर्लफ्रेंड ने नंबर दिया था पहले, उन्होंने कहा था कि आपका बिल ज्यादा आता है, आपका मुर्गा बना दें, तो सर मैंने बना दिया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं।
1: वो भी पिटेंगे और आप भी पिटोगे मुझे ऐसा लगता है।
5: नहीं सर, मैं नहीं पिटूंगा, आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं, मेरे साथ मेरे साथ जरा हंस के कह दीजिए कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: 89.6, 89.6,
6: इट्स हॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो।

0: 89.6 मिर्ची ला रहा है फिर से वही स्टेज जहां हर मॉमी को मिलेगी वो स्पॉटलाइट जो वो डिजर्व करती है। मिर्ची मॉमी अवार्ड 2026 एंट्रीज ओपन नाउ। रजिस्टर करो, नॉमिनेट करो एंड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। पार्टिसिपेट करने के लिए भेजें अपना इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन 5000 1896 एंड गेट रेडी टू शाइन।
1: फिर खाली हाथ चले आए, मेरी ईदी कहाँ है?
2: अरे पहले देखो तो किसको साथ लाए हैं।
3: नमस्कार, दिस इज रवीना टंडन। आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारक।
1: अरे वाह, ये हुई ना बात, आपको भी ईद मुबारक।
2: हाँ नहीं तो ऐसे ही बोल देती हो।
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. It's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go.

ऑफिशियल टेम्परेचर 40 हो या 45 डिग्रीज, क्लब मिर्ची का मूड साइंटिफिक कैलकुलेशन के बाहर है कि नहीं? क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप एक रेडियो जॉकी होते तो आप किस टॉपिक पर प्रोग्राम करते?
4: मैं डेफिनेटली लव का ही प्रोग्राम करना चाहता, जो प्रॉब्लम है कॉलर की और रोमांस में, लव में छोटी छोटी बातें, वो कैसे एक रेडियो जॉकी एक बहुत आसान तरीके से उसको सॉल्व कर देता।
3: हिमेश रेशमिया, अगर आप लव गुरु होते तो आप टोपी पहनते भी और अपने लव एडवाइसेस से हमें टोपी पहनाते भी। नॉट बैड। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bordal.
2: Only on Mirchi, it's hot.

गर्मी और एक्स के एक्सक्यूजेस दोनों का लेवल हर साल अनएक्सपेक्टेडली बढ़ ही जाता है. क्लब मिर्ची पे हॉटनेस ज्यादा और पेशेंस कम. लेट्स गो.

वॉल्यूम भी हाई था, एनर्जी भी हाई थी और टेम्परेचर तो पूछो ही मत। पार्टी खत्म हो सकती है लेकिन वाइब का आफ्टर इफेक्ट वो तो चलेगा सुबह तक, है कि नहीं। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे यार, डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंटी का एक साथ क्लब मिर्ची पे लौटेंगे क्योंकि

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं मराठी हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड बंगाली है, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कैसे समझाऊं?
1: अरे कोचू, बंगाली है तो बंगाली में समझाना।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।